शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। वबी सभी अधूरेपन की खूबसूरती। दोस्तों, आपने महसूस किया है कि हम सब जिंदगी में परफेक्ट होने के पीछे भागते हैं। परफेक्ट फोटो, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, जैसे जिंदगी कोई कंपटीशन हो जहां ट्रॉफी मिलती हो सबसे परफेक्ट इंसान की। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शब्द से मिलवाना चाहती हूँ जो हमें सिखाता है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं। ये शब्द है वबी सभी। ये जापान की एक सोच है और इसका सीधा

मतलब है जो अधूरा है, जो थोड़ा सा टूटा है, जो पूरा नहीं है, उसमें भी खूबसूरती है। सोचिए, एक पुराना मिट्टी का घड़ा, उस पर हल्की सी दरार है, रंग भी हल्का पड़ चुका है, पर जब उसमें पानी भरा होता है तो उसकी ठंडक कुछ अलग हो जाती है। अब उस घड़े को देखकर आप कहेंगे, अरे ये तो परफेक्ट नहीं है। लेकिन वबी सभी कहता है, इसी दरार में उसकी कहानी है। जो चीज बिल्कुल नई होती है उसमें इतिहास नहीं होता, पर जो थोड़ी सी पुरानी होती है, थोड़ी सी घिसी हुई होती है, उसमें यादें बसती हैं, एक अपनी दुनिया बसती है। वबी सभी का दूसरा पहलू है, सब कुछ बदलता रहता है। सुबह की धूप देखी है आपने, आज की ही देख लीजिए। जब पेड़ों के पत्तों के बीच से हल्की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ती है, वो रोशनी कुछ मिनट की मेहमान होती है, फिर बदल जाती है। शाम का आसमान जो पहले नारंगी होता है, फिर धीरे धीरे नीला और फिर अंधेरा। कोई भी पल रुकता नहीं, और शायद इसीलिए हर पल कीमती है। हम अक्सर सोचते हैं ये वक्त हमेशा ऐसा ही रहे, पर सच ये है, अगर सब कुछ हमेशा सेम रहेगा तो उसमें खास क्या रह जाएगा। वबी सभी हमें सिखाता है, जो बीत रहा है उसे रोकना नहीं, महसूस करना सीखो। अब जरा रिश्तों की बात करते हैं। हम सब चाहते हैं एक परफेक्ट साथी, जो हमेशा सही बोले, कभी गलती ना करे, हमेशा समझे हमें। पर क्या ऐसा होता है? हर इंसान में कमियां होती हैं। किसी को बात कहने में वक्त लगता है, कोई अपने जज्बात दिखा नहीं पाता। लेकिन जब हम उन कमियों के साथ किसी को अपनाते हैं, तभी तो प्यार गहरा होता है और सच्चा होता है। वह भी सभी कहता है, जो थोड़ा सा अधूरा है वही ज्यादा सच्चा है। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चमकदार रिश्ता कभी कभी सिर्फ दिखावा होता है, पर जो रिश्ता वक्त के साथ घिस कर और नरम हो गया हो, उसमें असली गर्मी होती है, असली गर्माहट होती है उस रिश्ते की। जापान में एक कला है, जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों को सुनहरे रंग से जोड़ा जाता है। उसकी दरारों को सुनहरे रंग से जोड़ा जाता है। सोचिए, जो जगह पहले टूटने की निशानी थी, वहीं अब सबसे ज्यादा चमक है। क्या ये खूबसूरत नहीं? हम अपनी जिंदगी में टूटने से डरते हैं, दिल टूट जाए, सपना टूट जाए, भरोसा टूट जाए। लेकिन शायद वही टूटना हमें सबसे ज्यादा मजबूती देता है। जो इंसान कभी नहीं गिरा, उसको उठने की ताकत का पता कैसे चलेगा? वह भी सभी कहता है, दरारें छुपाओ मत, उसमें रोशनी भर दो। आजकल सब कुछ तेज हो गया है, तेज बात, तेज फैसले, तेज काम, सब कुछ। हम खाना भी जल्दी खाते हैं, बात भी जल्दी करते हैं, और प्यार भी जल्दी जल्दी चाहते हैं। लेकिन वह भी सभी कहता है, थोड़ा धीरे चलो, सुबह की चाय को जल्दी जल्दी खत्म मत करो, उसकी गर्माहट को, उसकी खुशबू को, उसकी तासीर को महसूस करो। बारिश की बूंदों को बस देखकर निकल मत जाओ, उसकी खुशबू को सांसों में भरो। जिंदगी भाग कर नहीं, रुक कर समझ में आती है। और सबसे जरूरी बात, हम दूसरों की कमियां कभी कभी माफ कर देते हैं, पर अपनी कमियों को लेकर खुद ही से हर समय लड़ते रहते हैं। मैं परफेक्ट क्यों नहीं, मैं और अच्छा क्यों नहीं, मैं वैसे क्यों नहीं जैसे दुनिया चाहती है। वह भी सभी हमें ये सिखाता है, खुद को अपने अधूरेपन के साथ स्वीकार करो। आपका सफर सीधा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी रोशनी, कभी अंधेरा, लेकिन हर मोड़ पर एक कहानी जरूर मिलेगी, हर दाग में एक याद जरूर मिलेगी, और शायद वही आपको खास बनाती है। तो दोस्तों, आज जब आप किसी पुरानी तस्वीर को देखें, किसी अधूरे रिश्ते को याद करें,
या अपनी किसी गलती को सोचकर उदास हो जाए, तो एक पल के लिए रुक के जरूर सोचिए, शायद ये मेरा वबी सभी है, शायद यही मेरी असली खूबसूरती है। परफेक्ट फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, पर उसकी खुशबू देर तक रहती है। जिंदगी भी ऐसी ही है दोस्तों, थोड़ी सी अधूरी, थोड़ी सी टूटी हुई, फिर भी पूरी, और शायद इसी में उसका असली जादू है।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। मोबाइल बैटरी ट्रूथ। बैटरी 1% पर होती है, फिर भी हम ब्राइटनेस फुल करके रील देखते रहते हैं, जैसे फोन को बोल रहे हो, तू बस थोड़ा सा और जी ले मेरे लिए। What?

मिलने से पहले वो धागा जो दिखता नहीं। कभी ऐसा हुआ है आप किसी को पहली बार मिले और दिल कहे इसे तो मैं पहले से जानता हूँ। नाम नया, चेहरा नया, पर एहसास बहुत पुराना। पुराने युग के लोग कहते थे प्यार मिलने से शुरू नहीं होता, वो मिलने से पहले से चल रहा होता है सदियों से। एक अदृश्य धागा जो दो लोगों को धीरे धीरे पास लाता है। आज के जमाने में सब कुछ तेज है। प्रोफाइल देखी, मैसेज भेजा, रिप्लाई आया या नहीं उस पर फैसला। पर एक समय था जब प्यार आंखों की भाषा में लिखा जाता था। सोचिए, शाम का वक्त, छत पर ठंडी हवा, घर के अंदर मेहमान, बातें और शोर, और दो लोग बस एक दो पल के लिए एक ही आसमान को देखते हुए। कुछ बोला नहीं गया पर सब कुछ कह दिया गया। इंडिया में प्यार अक्सर शोर नहीं करता, वो ठहर कर सांस लेता है। एक कप चाय के साथ हाथ बदलना, उंगलियों का हल्का सा स्पर्श, और फिर दोनों का सीधा होकर बैठ जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही उसकी शुरुआत है। पहला प्यार यहाँ कभी बदतमीज नहीं होता, वो विनम्र होता है, दिल तेज धड़कता है, पर चेहरा शांत रहता है। आप बताइए, क्या आपने कभी किसी का नाम बिना वजह दोहराया है जैसे कोई मंत्र हो? यही तो वो पहला धागा है। पुराने देशों में कहानियां मिलती हैं। जंगली हंस पहाड़ों के पार संदेश ले जाते थे, एक पत्र लिखने में घंटे लगते थे। हर शब्द सोच कर लिखा जाता था, क्योंकि वो शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होता था। आज हम टाइपिंग देखकर बेचैन हो जाते हैं, तब लोग महीनों तक इंतजार करते थे और विश्वास कम नहीं होता था। इंतजार उस धागे को कमजोर नहीं करता था, उसे और मजबूत करता था। उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, तुम वही हो। जिससे तुम प्यार करते हो उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगते हो। इसलिए प्यार सिर्फ बाहर का सफर नहीं, अंदर का सफर है, भीतर का। कभी कभी रिश्ते मिलते नहीं, याद रह जाते हैं। फूल मुरझा जाता है पर खुशबू हवा में बहती रहती है। शायद इसीलिए कुछ लोग जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। इंतजार जब रुकना ही प्यार था। आजकल हम सब जल्दी में हैं। मैसेज का रिप्लाई 2 मिनट में नहीं आया तो दिल परेशान, कॉल लेट हो गया तो 100 सवाल। पर क्या आपने कभी महसूस किया है, इंतजार का अपना स्वाद होता है। पुराने समय में प्यार तुरंत नहीं मिलता था, वो धीरे धीरे पकता था। राधा और कृष्णा का नाम लीजिए, उनका मिलन छोटा था और विरह बहुत लंबा, पर उस विरह ने उनके प्यार को कम नहीं किया, उसने उसे भक्ति बना दिया। यहाँ प्यार पकड़ना नहीं, समर्पण है। हीर ने रांझा के लिए समाज का विरोध सहा, सोनी ने महिवाल के लिए दरिया पार किया, ससी ने रेगिस्तान में कदम रखे सिर्फ एक नाम के सहारे। ये सभी कहानियां सुखंत नहीं है दोस्तों, पर अमर हो गई। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि यहाँ प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, सच्चा रहना है, उस इंतजार में, उस प्यार में। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लोग उसे प्रेम का प्रतीक कहते हैं, पर वो दर्द का संगमरमर है, याद को रूप देने की कोशिश है। सोचिए, अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो क्या उसकी कीमत समझ आएगी? इंतजार दिल को गहरा करता है, दूरी याद को तेज करती है।
पुराने युग में लोग चांद देखकर सोचते थे, वो भी शायद इसी चांद को देख रहा हो। कितनी सुंदर बात है ना, दूर रहकर भी एक ही रोशनी के नीचे साथ साथ होना। आज हम ऑनलाइन दिखते हैं, पर कभी कभी दिल ऑफलाइन हो जाता है, तब इंतजार बोझ सा लगता है, पर शायद इंतजार ही प्यार का असली पत्र है। जब तक मिलन ना हो तब तक हर दिन एक प्रतिज्ञा जैसा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप रुक सकते हैं? क्या आप किसी के लिए समय को धीरे चलने दे सकते हैं? क्योंकि जो प्यार रुक सकता है वो ही टिक सकता है। और

मुझे इस बात से वो गाना याद आ गया, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये दूर से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। जिंदगी में हर चीज हमेशा नहीं रहती दोस्तों, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, पर क्या प्यार कम हो जाता है? अमृता प्रीतम ने लिखा था, फूल चला गया पर सुगंध नहीं गई, कितनी गहरी बात है ये। भारत में प्यार सिर्फ मिलन नहीं, याद भी है, स्मृति भी है और गीत भी है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और फिर चले जाते हैं, पर उनका असर हवा में जैसे रह जाता है, जैसे घुल जाता है, जैसे बरसात के बाद मिट्टी की खुशबू, जैसे शाम को मंदिर की घंटी। यहाँ प्यार को पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती, उसे जीने दिया जाता है जैसे कोई तितली। ससी और पुन्नू की कहानी याद कीजिए, रेगिस्तान ने उन्हें अलग किया पर कहानी ने उन्हें अमर कर दिया, मौत ने शरीर लिया पर प्रेम को नहीं ले जा सकी। ये देश सिखाता है प्यार व्यक्ति तक सीमित नहीं, वो एक अनुभव है। आज के युग में हम प्यार को जल्दी डिफाइन कर देते हैं, जल्दी से आई लव यू बोल देते हैं, लेबल दे देते हैं और स्टेटस बना देते हैं इन अ रिलेशनशिप। पर पुराने समय में प्यार का जो ग्रामर था ना, जो व्याकरण थी, वो बहुत अलग होती थी। बहुत कम शब्द बट बहुत सारा अर्थ, एक निगाह, एक संकल्प, एक दिया जो हवा से बचाकर रखा गया। प्यार कभी कभी मिलकर नहीं, याद करके भी जिया जाता है। और शायद सबसे बड़ा सच यही है, प्यार को हमेशा रहना जरूरी नहीं पर उसका असर जरूर रहना चाहिए।

0: शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। इंडियन वेदर लॉजिक। गर्मी में बोलते हैं बस बारिश आ जाए, बारिश में बोलते हैं बस थोड़ी सी धूप निकल जाए, धूप में बोलते हैं ये क्या भट्टी बन रखा है। What?

कोमोरबी। जब रोशनी पेड़ों के बीच से दिल तक आती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे खूबसूरत शब्द के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा शब्द जो सिर्फ एक नजारा नहीं, एक एहसास है। जापानीज भाषा का शब्द कोमोरबी। कोमोरबी का मतलब होता है जब सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों के बीच से छन कर जमीन पर गिरती है। बस इतना सा नहीं, सिर्फ इतना सा नहीं। सोचिए, सुबह का वक्त है, हवा हल्की सी चल रही है, पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं और सूरज की किरणें उन पत्तों के बीच से निकलकर जमीन पर जैसे सोना बिछा रही हो। कभी आपने ध्यान दिया है इस पल पर? हम अक्सर जल्दी में होते हैं, सुबह सुबह भाग दौड़, ऑफिस, घर, फोन, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस। पर कभी कभी जिंदगी हमें रोक कर कहती है, बस रुक जाओ और देखो। कोमोरबी वही पल है। ये शब्द हमें सिखाता है कि रोशनी हमेशा सीधी और तीखी नहीं होती। कभी कभी रोशनी को भी पत्तों से होकर गुजरना पड़ता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा टूटना पड़ता है, थोड़ा सा छनना पड़ता है, तब जाकर वो और भी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल जिंदगी की तरह हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ पत्ते होते हैं। मुश्किलें, दुख, कंफ्यूजन, रिश्ते जो समझ नहीं आते, सपने जो देर से पूरे होते हैं। कभी कभी लगता है अंधेरा ज्यादा है और रोशनी कम, पर शायद रोशनी कम नहीं होती, वो बस किसी और तरीके से आ रही होती है, छन रही होती है आपके जीवन में। कोमोरबी हमें ये याद दिलाता है कि रोशनी को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी छनी हुई रोशनी भी काफी है दिल को गर्म रखने के लिए। आपने कभी देखा है जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और जमीन पर रोशनी और छाया मिलकर एक अजीब सा डिजाइन बना देती है, कहीं गोल, कहीं टेढ़ी, कहीं बिल्कुल टुकड़ों में। जिंदगी भी वैसी ही है दोस्तों, कहीं साफ, कहीं उलझी हुई, कहीं चमक और कहीं सिर्फ एक साया। पर दोनों साथ हों तभी तस्वीर पूरी लगती है। कोमोरबी सिर्फ प्रकृति का एक दृश्य नहीं है, ये एक दर्शन है। ये कहता है अंधेरा और रोशनी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, ये साथी हैं। सोचिए, अगर पेड़ के पत्ते ना होते तो क्या रोशनी इतनी खूबसूरत लगती? शायद नहीं। तो शायद हमारे जीवन के पत्ते भी बेकार नहीं, उन्हीं के बीच से तो रोशनी छनके आती है। कभी कभी हम सोचते हैं

नियम है। आप नोटिस करिए, कोमोरेबी को देखने के लिए स्पीड कम करनी पड़ती है। जल्दी में हम सिर्फ पेड़ को देखते हैं या सिर्फ धूप को, पर जब हम थोड़ा रुकते हैं तब हम दोनों के बीच का एक जादू सा देखते हैं। आजकल हम सब क्लियर आंसर्स चाहते हैं, सीधा रास्ता, सीधी रोशनी, सीधा रिजल्ट, पर जिंदगी अक्सर कोमोरेबे की तरह होती है, सीधी नहीं, छनी हुई, साफ नहीं, थोड़ी सी मिलती जुलती, और शायद इसी में उसकी असली सुंदरता है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं और कोई दोस्त बस चुपचाप आपके पास आकर बैठ जाता है, वो दोस्त पूरा सूरज नहीं होता, बस एक छनी हुई किरण होता है, पर उस पल में वही काफी होता है। या जब आप थककर घर आते हैं और चाय की पहली सिप लेते हैं, खिड़की से आती हुई हल्की सी धूप, वही कोमोरेबी है। ये शब्द हमें माइंडफुलनेस सिखाता है, पर सिंपल तरीके से। ये कहता है, जिंदगी के बड़े बड़े पल का इंतजार मत करो, छोटे छोटे पल में रोशनी ढूंढो। इम्परफेक्ट रोशनी से भी रोशनी ही होती है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी के पत्तों को तोड़ देना चाहते हैं, सोचते हैं ये मुश्किलें ना होती तो मैं ज्यादा चमकता, पर शायद बिना इन पत्तों के आपकी रोशनी में वो कहानी ही नहीं होती। कोमोरेबी हमें ये एक्सेप्ट करना सिखाता है कि हर पल परफेक्ट नहीं होगा, हर रास्ता सीधा भी नहीं होगा, पर हर जगह कहीं ना कहीं से रोशनी जरूर आएगी, बस देखना होगा। मैं आपसे एक छोटा सा काम कहना चाहती हूँ। आज जब आप बाहर निकलें या बालकनी में खड़े हों या किसी पार्क से गुजरें, एक बार बस रुक के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, और देखिए कैसे रोशनी पत्तों के बीच से निकलकर जमीन पर गिर रही है, कैसे हवा के साथ वो पैटर्न बदल रहा है, कैसे छाया और धूप साथ साथ चल रहे हैं। और फिर अपने दिल से पूछिए, मेरी जिंदगी का कोमोरेबी क्या है? कौन सी मुश्किल के बीच से रोशनी आ रही है? कौन सा साया है जो रोशनी को खास बना रहा है? कोमोरेबी हमें ये याद दिलाता है कि रोशनी को चमकने के लिए कभी कभी साये की भी जरूरत होती है, और शायद हम सब अपनी जिंदगी में किसी और के लिए कोमोरेबी बन सकते हैं। पूरा सूरज नहीं, बस एक हल्की सी किरण। कभी कभी किसी की जिंदगी में सिर्फ इतना ही काफी होता है। तो दोस्तों, आज से जब आप पेड़ों के बीच से छनी हुई धूप देखें, उसे सिर्फ एक नजारा मत समझिए, उसे एक याद समझिए, एक संदेश समझिए कि जिंदगी टूट कर भी खूबसूरत हो सकती है, कि अंधेरा और रोशनी एक साथ रह सकते हैं, कि हर पत्ते के बीच एक किरण छुपी है उम्मीद की, और जब रोशनी आ रही है, चाहे छनी हुई ही सही, उम्मीद जिंदा है। यही है कोमोरेबी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है थिएटर या स्टेज की बहुरंगी दुनिया का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनका सफर जितना लंबा है उतना ही प्रेरणादायक भी। रेल की पटरियों से शुरू हुई उनकी कहानी आज मंच, फिल्म और टीवी तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री अतुलेश कुमार जी का, एक ऐसे शख्स जिन्होंने रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और साथ ही रंगमंच पर अपनी एक्टिंग, लेखन और निर्देशन से सबका दिल जीत लिया। 30 से ज्यादा नाटकों में शानदार भूमिकाएं, 2 बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड और हाल ही में टीवी शो दूसरी माँ में अपनी उपस्थिति से सभी को प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं ऐसे कलाकार का जिन्होंने ड्यूटी और पैशन दोनों को बराबर सम्मान दिया। अतुलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
1: धन्यवाद आलोक जी और सभी श्रोताओं।

0: सबका मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ में जुड़ करके और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद समीर गोयल साहब का भी।
1: तो अतुलेश जी, शुरुआत करते हैं। तो अब आप आरंभ से बताइए, बचपन में ही एक्टिंग का शौक लग गया था क्या आपको?
0: ये पता नहीं क्या था, एक जुनून था या क्या था, लेकिन हाँ, मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद था, लेकिन बंदिशें बहुत थी। कभी कभार हम लोग नाटक वगैरह देखने जाया करते थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने पहला पिक्चर जो देखा जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन उससे पहले मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। ये पता नहीं कहाँ का एक, वो पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, एक उत्सुकता थी, कोई कीड़ा था या क्या था। या बचपन में मैं मेरे फादर को देखा करता था कि भाई फादर के साथ में बैठ करके कुछ एक्टर एक्टिंग सीखा करते थे, और कुछ हमारे यहाँ रिहर्सल वगैरह चलती थी, लेकिन जब मैंने होश संभाला तब तक हमारे फादर ने ये सब छोड़ दिया था। तो ये समझ लो कि बचपन से ही मेरी कुछ इसमें उत्सुकता रही, और बहुत बाद में जाके पता लगा कि हमारे फादर किसी जमाने में ड्रामा डायरेक्टर हुआ करते थे। ये किस्से
1: अरे
0: बहुत सुनाया करते थे वो, लेकिन मुझे नहीं लग मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो प्ले डायरेक्ट करते थे। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट फादर के टाइम के वो मिले, मिल करके मैंने उनको पैर वैर छुए, तो उन्होंने कहा हाँ हम आया करते थे और अंकल जो है ड्रामा डायरेक्ट किया करते थे। ये बहुत बाद में आकर के मुझे पता लगा।
1: भाई अतुलेश जी, ये बात तो अद्भुत है। हमारे साथ भी आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है, ये बात शेयर नहीं हुई कि आपके फादर को भी डायरेक्शन का और एक्टिंग का शौक था। ये तो आज ही इस इंटरव्यू के दौरान मुझे पता लगा है, और नॉस्टैल्जिक भी है और अद्भुत भी है, और उसी से शायद आपने ये लिया है।
0: बिल्कुल, मजे की बात ये थी आलोक जी कि हमारे फादर को मैंने कभी पिक्चर देखते हुए नहीं देखा, और उनके ब्रदर वगैरह जो थे हमारे, ताऊ या चाचा जो भी होते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे कि चलो पिक्चर देख आते हैं, तो वो कभी पिक्चर देखने नहीं जाते। एक बड़ा मुश्किल से एक दबाव बना के उनको वक्त पिक्चर दिखाने लेकर के गए, फादर बीच में से ही उठ आए। बलराज साहनी की पिक्चर थी।
1: हाँ, बहुत चलिए, बहुत अच्छा है। अब आप थोड़ा आपके रेलवे के सफर पे आते हैं। आपने रेलवे में एक बहुत ही लंबा और ऑनरेबल कैरियर बिताया, लेकिन साथ ही साथ आप ड्रामा और कल्चरल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे आप मैनेज करते थे?
0: ये थोड़ा बचपन से ही थोड़ा शौक था कि भाई मैं कहीं एक्टिंग करूं या क्या करूं। तो हमारे यहाँ एक स्टूडियो हम लोगों ने खोला हुआ था, फोटोग्राफी का एक शौक वो भी था हमारा, तो फोटोग्राफी करने जाया करते थे। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ मेरे फादर की वॉइस, तो फादर भी रेलवे में थे, तो फादर चूंकि बहुत एक्टिव थे तो लोग बागों को मुझसे भी उतनी ही ज्यादा उम्मीदें थी। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 1984 के अंदर, तो उस समय से ही लोग बाग मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम इस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, सब जगह मेरे पीछे पड़े रहते थे। और पता नहीं क्यों एक आत्मविश्वास उनके अंदर था कि ये आदमी कर जाएगा, इसको जो काम दो वो कर लेगा ये। और मैंने भी उसको ये समझते हुए लिया कि फादर की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे करना है। तो ये एक अद्भुत रहा।
1: मतलब फादर एक साये की तरह आपके साथ हमेशा रहे, एक तरह से अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा।
0: बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
1: आपको याद है आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब और कहाँ हुई, और कैसे उस वक्त आपने अनुभव कैसा रहा था, वो कैसा हुआ?
0: वो बहुत ही मजेदार रहा। वो एक्चुअल मैं पहला, अगर सोचा जाए तो पहला स्टेज तो मैंने प्राइमरी स्कूल में, जब मैं मेरे ख्याल से नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, तब हमको एक सॉन्ग के लिए खड़ा किया गया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था तो उसमें एक सॉन्ग दिया था, तो उसमें वो कर गुजरे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में एक सनक सी थी जिसको मैं पहचानने में भूल कर रहा था, क्या कर रहा था। मैं जब फिफ्थ क्लास में पढ़ता था तो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर मैं पढ़ता था, आदर्श विद्या मंदिर बांदीपुर के अंदर। उस समय एक प्ले था, उसका नाम था हृदय परिवर्तन। ये था महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच का। शक्ति सिंह किन्हीं कारणों से अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि भाई मैं अपने भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ हूं, तो मेरा रोल था शक्ति सिंह का, मैं महाराणा प्रताप का पीछा कर रहा हूं और वो पलट करके मुझे देखते हैं, आगे भागते हैं। लास्ट में मतलब ये कि स्टेज की परफॉर्मेंस थी तो इसलिए उनको स्टेज पर रुकना ही था। मैं उनके आगे गड़गड़ाया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। इतने में अकबर का कोई सिपाह साला जो होता है वो उसने तीर चलाने की कोशिश करी और मैंने अपने तीर से उसको मार दिया। और उस समय आंसू तो खैर क्या आते थे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे आंसू आए। मैं महाराणा प्रताप के कंधों में पड़ा हुआ था, महाराणा प्रताप ने मुझे गले से लगाया, ये एक मुझे अभी भी वो याद है। ये पहला
1: वैसे आपने बहुत पुरानी याद दिला दी मुझे भी। ये शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का जो है, ये हम लोग की स्कूल की किताब में भी ये चैप्टर था और हल्दीघाटी के युद्ध से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें भी बहुत पुरानी याद है। आप गजब की चीज याद दिला दी आपने, ये हिस्टोरिकल बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पुरानी हिस्टोरिकल बात पे ही एक अपन गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं।

0: आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर हेडक्वार्टर में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और जॉइंट कल्चर सेक्रेटरी भी रहे हैं। उस समय में रेलवे में कल्चरल एक्टिविटीज का माहौल कैसा था? थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं कुछ उसके बारे में, रेलवे के बारे में।
1: यूं तो रेलवे की एक सशक्त टीमें रही हैं जगह जगह, लेकिन जयपुर डिवीजन इस मामले में कहीं थोड़ा सा पीछे था। हाँ, मुझे याद है कि 1982 के अंदर रेलवे की एक टीम ने या एक टीम लीडर ने यहाँ 82 में, जब एशियाड 82 हुए थे, उस समय के लगभग 1,000 लड़कियों को लेकर के घूमर वहां कराया था। तो वो चूंकि फादर के दोस्तों में हुआ करते थे, मैं उनके टच में था, तो वो टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट पे हुआ करते थे, तो वो डांस भी अच्छा करते थे, अच्छी वो करते थे, तो मैं उनके टच में था बराबर से। लेकिन हाँ, रेलवे का जो आप कह रहे हैं कि कल्चरल था, कल्चरल बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन जयपुर डिवीजन में काफी कम रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी फरमान कुछ ज्यादा दबाव में चलता था।
0: अच्छा।
1: तो और जहां तक हम बात करें जयपुर डिवीजन की, मतलब ये डिवीजन बने हुए थे, वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन था जयपुर डिवीजन, यहाँ ब्रिटिश टाइम का इंस्टीट्यूट बना हुआ था, जिसके अंदर किसी जमाने में बहुत अच्छे शो हुआ करते थे। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था बांदीकुई में, और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था फुलेरा के अंदर। तो बांदीकुई में जो इंस्टीट्यूट चलते थे, वहां इंस्टीट्यूट में हम लोग प्ले वगैरह देखा करते थे, और उसमें हमारे फादर कभी डायरेक्ट किया करते थे।
0: और ये एक छोटे मियाँ बड़े मियाँ ट्रेन रेस के नाम ही अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसा बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया जो बहुत पॉपुलर रहा, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो शेयर कीजिए।
1: उसके पीछे की कहानी यह है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2003 के अंदर इसका जन्म हुआ। तो अलग अलग जोन बनाए गए थे, नए जोन खोले गए थे, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से मिलकर के एक नया जोन बनाया गया था, और ये अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ था। तो नई एक कमेटी बनाई गई कि भाई इसका जो अपन पहली बरसी जो मनाया जाए, पहला एनुअल डे जो मनाया जाए, वो किस तरीके से मनाया जाए। तो एक बहुत ही क्रिएटिव डॉक्टर एनके कल्ला थे, उन्होंने उन्होंने पूछा होगा किसी से कि भाई यहाँ कल्चरल का कोई संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। तो उसमें ये रहा कि मेरा नाम उभर करके आया सबसे पहले, कि अगर किसी आदमी को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए, तो वो सबसे पहला शख्स अतुलेश होगा।
0: वेरी गुड।
1: तो चर्चाएं हुई, चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम एक अद्भुत तरीके का करेंगे।

0: क्योंकि यहाँ छोटी लाइन भी है और बड़ी लाइन भी है, गैस कन्वर्जन का काम चल रहा है, तो इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि हम एक छोटी लाइन के डिब्बों के अंदर जो सीटें होती हैं उन सीटों को हटा के साइड में लगाते हुए बड़ी लाइन के डिब्बे जो हैं उनके अंदर बड़े मतलब बीच में से सीटों को हटाते हुए साइड में लगा, और बीच में मतलब आठ आठ बोगियों के वो बनाए गए और बीच में जो है कल्चरल प्रोग्राम चलते रहे। तो हमारे पास में जो जोन में डिस्ट्रिक्ट थे या डिवीजन थे वो थे जोधपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जयपुर डिवीजन। इसमें भी वर्कशॉप भी शामिल थे जिसमें बीकानेर वर्कशॉप था, जोधपुर वर्कशॉप था, अजमेर वर्कशॉप था। तो इस तरीके से हमारे पास में टीमें पर्याप्त, दो दो टीमें हमने मंगाई सब जगह से, और हमारा सौभाग्य रहा कि उसके अंदर जो है जसदेव सिंह जैसी शख्सियत भी उसकी विटनेस रही। बहुत ही बढ़िया चला है, छोटी लाइन का और बड़ी लाइन का एक बराबर से रेस हुई, उस रेस में कभी छोटी लाइन आगे कभी बड़ी लाइन आगे, तो इस तरीके से चलता रहा।
1: बड़ा
0: बहुत
1: बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग
0: बहुत
1: और
0: ही
1: बड़ा
0: इंटरेस्टिंग था।
1: इनोवेटिव।
0: हाँ, जिसको बीबीसी तक ने कवर किया इस न्यूज को।
1: अरे वाह वाह
0: जी
1: वाह, ये तो जसदेव सिंह साहब की आपने याद दिला दी। क्या क्या
0: जी
1: हस्ती थे, वो भी जयपुर के ही थे भाई, वो जयपुर
0: हाँ
1: के
0: जी
1: थे, और क्या तो कमेंट्री करते थे क्रिकेट की और हॉकी की, तो खैर गजब के ही थे वो।
0: मेरे लिए इससे बड़े सम्मान का विषय कोई नहीं था कि मैं बिल्कुल साक्षात जसदेव जी के सामने खड़ा हुआ हूं और उनसे बात कर रहा हूं, जहां कभी मैं कमेंट्री कान लगा करके उस पर ट्रांजिस्टर पर सुना करता था कि जसदेव सिंह जी हॉकी की कमेंट्री कर रहे हैं, क्या मजा आता था सर।
1: अद्भुत अद्भुत, ये तो बहुत बढ़िया। चलिए, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के नाम पे, इसके नाम की शायद कोई एक फिल्म भी आई है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं उस

0: अब तुलेश जी आते हैं आपकी थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में
1: जी।
0: आपकी पहली थिएटर एक्टिंग 1968 में और आखिरी 5 अगस्त 2025 में, मतलब लगभग 6 दशक का शानदार सफर। इतने सालों तक एक्टिंग का जुनून कैसे बरकरार रहा है आपका?
1: अब यो सोच लीजिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आपको अपना दैनिक कार्य भी करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं नौकरी भी करनी है, और आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं, तो समय में से समय ही चुराना पड़ता है साहब, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस छोटे छोटे क्षणों को चुराते हुए मैं अपना काम करता रहा। कुछ तो ये रहा कि लोगों का विश्वास मेरे साथ में रहा, कुछ मेरे पिताश्री का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, तो कुल मिलाकर के ये पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हो गया बराबर से।
0: आपने स्टेज पे भी एक्टिंग की है, कैमरे के सामने भी एक्टिंग की है, क्या दोनों में क्या फर्क महसूस होता है?
1: स्टेज की एक्टिंग आपके पसीने निकाल देती है और जो आप पर्दे पे जब आप करते हैं तो ये समझ लो कैमरा मैन के पसीने निकलवा देती है। मतलब वहां तो आपको रिटेक के चांस ही चांस है, वो बार बार कहेगा कि रिटेक रिटेक रिटेक, और जब आप स्टेज पे होते हैं तो स्टेज का जब आप शो कर रहे होते हैं और आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई तो सामने जो आपको डायलॉग कवर कर रहा है को आर्टिस्ट, उसके पसीने आ जाते हैं। बहुत मुश्किल है साहब स्टेज की आर्टिस्ट स्टेज पे आपको परफॉर्म करना, और उतना मतलब उतना तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, लेकिन वहां भी मजा हुआ, कलाकारी चाहिए आपको, जहाँ आप बड़े पर्दे पे या टीवी पे एक्टिंग कर रहे हैं तो वहां भी मजा हुआ कलाकार चाहिए, लेकिन वहां क्या रिटेक के चांसेस होते हैं, यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ अगर आपको इम्प्रोवाइज करना आता है तो आप चल सकते हो, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है।
0: ये बहुत ही आपने गहरी बात कह दी और सही बात है, स्टेज की एक्टिंग और कैमरे के सामने की एक्टिंग में अपना डिफरेंस बहुत ही बखूबी बयान कर दिया। चलिए, आपने 30 से ज्यादा नाटकों में लीड और सपोर्टिंग रोल किए हैं, कोई ऐसा किरदार जो आज भी आपको याद है, आपके बहुत दिल के करीब है, ऐसा कोई किरदार है?
1: हाँ, किरदार तो है सर, मैं बताऊं आपको, एक बार मैं प्ले कर रहा था तो मुझे बोलना था विद्यावती, विद्यावती मेरी मिसेज का नाम था, और बोलना था ये क्योंकि विद्यावती मैं आज कमला की शादी तय कर रहा हूं, मेरे मुंह से ये निकल गया विद्या की माँ मैं आज रिश्ता तय कर आया हूं। फिर मैंने वहां कमला नहीं बोला, कमला की जगह अपनी बेटी का बोला, ये मैंने वहां संभाला, थोड़ा हिला देने वाला बात हुई, और लेकिन वो बड़ा सक्सेस हुआ और उसमें हम लोगों का अवार्ड भी मिला, क्योंकि वो डायरेक्टर जानता था और मैं जानता था कि कहां मिस्टेक हुई
0: जी।
1: तो बस ये रहा। और एक हादसा ये हुआ कि मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा था तो उस डायरेक्शन के अंदर एक लड़का हमारे बहुत पीछे पड़ा कि देखो मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज कहां तक जाती। मेरा कायदा ये रहा कि जब मैं टीम के साथ करता हूं एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूं तो मुझे चाहिए होता है कि स्टेज पे से कम ऑडियंस की 5 पंक्ति तक आपकी आवाज बिना माइक के जाए, उसके मतलब उससे कम मैं सहमत नहीं होता। तो उस आर्टिस्ट ने मुझे काफी दूर तक आवाज सुना करके बताई, लेकिन वो जैसे ही स्टेज पर आया, स्टेज पर आने के बाद वो ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक होते के साथ ही अब वो मेरी तरफ देखे, क्योंकि मैं विंग में खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये तो खतरनाक काम हो गया। मैंने जबरदस्ती एक आर्टिस्ट को स्टेज पर धक्का दिया, वो बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ, उसने बात को संभाला। तो ये तो बात रही, लेकिन जहां तक मेरे किरदार का सवाल है तो मुझे सेठ जी के रोल बहुत अच्छे लगे, जहां जहां मैंने सेठ की किरदार निभाए, या कहीं कहीं मुझे ऐसे करेक्टर आर्टिस्ट में मान के चलो कि करेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते।
0: अच्छा, ये सेठ का रोल आपके दिल के काफी करीब, अम्मा वो बिल्कुल राजस्थानी पगड़ी वगड़ी लगा के सेठ के रोल जो
1: जी
0: होते हैं वो आपने काफी किया लगता है।
1: जी
0: तो चलिए इस किरदार की बात पे एक गाने के लिए हम एक साथ में देते हैं अपने एक गाने को और एक गाना सुनते हैं।

0: बात कर ले।
1: अतुलेश जी, आप दो बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीत चुके हैं, डायरेक्शन का एक्सपीरियंस एक्टिंग से कितना अलग रहता है?
2: डायरेक्शन और एक्टिंग का ये समझ लो कि काफी डिफरेंस है। डायरेक्टर जो होता है उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है कि मतलब ओवरऑल सारे करेक्टर जितने भी काम कर रहे हैं वो उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये देखना पड़ता है। जिस हद तक आपको पब्लिक तक आपको अपनी बात पहुंचानी है उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उनके इमोशन वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि जो इमोशन आप पब्लिक में ढालना चाहते हो या पब्लिक के चेहरे पे देखना चाहते हो। मतलब अगर कुछ ऐसा है कि भाई आंख में आंसू आने हैं तो पब्लिक बाकायदा रुमाल निकाल के आंसू पोंछते हुए दिखाई देनी चाहिए। अगर हंसी की बात है तो वो खुल करके हंसने वाली बात आ जानी चाहिए। और जहां तक एक्टिंग का सवाल है, वो एक्टिंग तो आप अपने ऊपर ही पूरा खर्चा करते हो, अपने ऊपर ही पूरा फोकस करते हो, आप कोशिश करते हो उस किरदार को पढ़ने की, उस किरदार की सराउंडिंग्स में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको देखने की, और उसको उतार करके, मतलब जैसे किसी किरदार को आपने जहन से लेकर के और आपके कलेजे तक उतारा और कलेजे से निकाल करके मुंह से निकाल के और आपके हाथ और आंखें और जो जो ऊपर मतलब शख्स से शिरा से लेकर के और नीचे मतलब कलवे के नाखून तक आपका जो पोस्चर आना चाहिए, जस्चर आना चाहिए, वो सब दिखाई देना चाहिए, वो उसकी बात है।
1: बहुत खूबसूरती से आपने बताया ये बात, ये डिफरेंस। तो एक प्ले तो आपने खुद भी लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्ट भी किया है, तो और शायद वो आकाशवाणी पे भी रिले हुआ था, कोई उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए कुछ।
2: हुआ यूं कि हमारे यहाँ रेलवे वीक मनाया जाता है, सब जानते हैं कि भाई अप्रैल के उसके अंदर रेलवे वीक मनाया जाता है।
1: अच्छा,
2: जब रेलवे पहली रेलवे शुरू हुई थी उसको लेकर के पूरी इंडियन रेलवे के अंदर एक रेलवे वीक मनाया जाता है, तो उसमें तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें अवार्ड फंक्शन भी होते हैं। तो मुझे कहा गया कि एक शॉर्ट प्ले आप लिखो और लिखने के बाद में वो करना है, तो मैंने एक शॉर्ट प्ले लिखा, बहुत हंसी मजाक का प्ले था वो। तो उसको इत्तेफाक से ये आपके हरिराम आचार्य जी के भाई थे घनश्याम आचार्य, जो आकाशवाणी के अंदर मेरे ख्याल से ड्रामा डिपार्टमेंट उनके पास में था, तो वो वहां देख रहे थे उसको, कवर कर रहे थे या क्या, मतलब वो बहुत आनंदित हो रहे थे। तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो बोले यार ये किसने लिखा है यार, ये मिलाओ उससे मिलाओ। तो लोगों ने कहा ये इन्होंने लिखा है तो इनसे बात कर लें आप। तो मेरी बात हुई घनश्याम आचार्य जी से, तो उन्होंने कहा मुझे मुझे एक प्रोग्राम चाहिए है युव वाणी के लिए। अब चूंकि टीम का लीडर मैं था तो जो टीम के लीडर होने के नाते मैंने कहा कि यार ऐसा होना चाहिए कि भाई सब तरह के प्रोग्राम उसमें शामिल हो जाए, वैरायटी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें गाना भी हो, म्यूजिक भी हो, प्ले भी हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई युव वाणी के लिए आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें वैरायटी प्रोग्राम चलेगा या खाली मेरा प्ले आपको लेना है? बोले वैरायटी हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया माउथ ऑर्गन प्लेयर थे, उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया और फिर एक प्ले लिखा मैंने हाथ की हाथी, और लिखने के बाद में वो रखा मेरे पास में, और उन्होंने कहा मैं जल्दी संपर्क करूंगा आपके आपसे। तो उन्होंने

0: हमको वो चांस भी नहीं दिया। एक हमारे गजल गायक भी थे, तो वो उनका गजल का भी प्रोग्राम लिया मैंने, तो उन्होंने वो चांस भी नहीं दिया मुझे कि भाई मैं उसको एक दो रिहर्सल निकालूं। बोले आ जाओ फटाफट आ जाओ आकाशवाणी में, अंदर उसके अंदर लगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और जाते के साथ उन्होंने बोले अंदर घुस जाओ और इसको पढ़ो, अपने प्ले को पढ़ो। तो मैं अपने साथ तीन चार लोगों को ले गया, जिसमें एक फीमेल आर्टिस्ट भी थी। तीन चार लोगों को ले जाने के बाद में वहां जब हमने शुरू किया, तो उन्होंने कहा बीच में, अरे आप थोड़ा सा निकल के इधर आओ, हारमोनियम पे दो बीट दे दो फटाफट। वो बीट दी, और जब शाम को मैंने सुना तो मैं तो चकरा गया बुरी तरह से। मैंने कहा ये मेरी आवाज है, और वो जो हारमोनियम हमने प्ले किया था वो इतना फिट बैठ रहा था, मजा आ गया उसके अंदर। तो वो प्ले मेरा लिखा हुआ था, उसमें हमने एक्ट भी किया अपने हमारी टीम के साथ में। एक मजेदार रहा
1: बहुत अद्भुत
0: एक्सपीरियंस।
1: विवरण बताया आपने आकाशवाणी का, और घनश्याम आचार्य जी की जो बात आपने कह दी ना, कोइंसिडेंटली कह लीजिए या कैसे, घनश्याम आचार्य जी से मेरा भी किसी जमाने में बड़ा परिचय था।

0: हवाओं पे लिख दो हवा। अतुलेश जी, अब आते हैं आपके फिल्म टीवी और वेब सीरीज के सफर पर। आप 7 बॉलीवुड फिल्में, 6 टीवी सीरियल्स और 4 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। इनमें से कौन सा मीडियम आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: बड़ा पर्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं ना, टीवी सीरियल्स जो वो आपके घरों तक पहुंचते हैं, वहां से आपको फीडबैक मिलता है। अब बड़े सिनेमा को तो हालांकि आजकल तो सभी प्लेटफॉर्म पे आने लगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल गए, सब पे आने लगे, लेकिन तीनों जगह वो मौज मस्ती है और वो बढ़िया आलम रहता है। बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट रहता है इनका। मुझे तो तीनों जगह पसंद करने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मेरा लगाव रहा थिएटर से, जो आप ये समझ लो कि ये मूल है उसका। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन लोगों ने फिल्में की हैं, वेब सीरीज की हैं, उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। अब वो हो सकता है कि उनके अंदर कहीं से कोई निखार हो या क्या हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि थिएटर करना जरूरी है।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, उम्दा एक्टर्स हैं, नसरुद्दीन शाह कह लीजिए या कोई, ये सब स्टेज से ही निकले हैं और अब अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हाल ही में आपने एक NTV के लिए शो किया है दूसरी माँ, इस अनुभव के बारे में बताइए, ये कैसा है?
1: ये बड़ा बढ़िया अनुभव है साहब। हालांकि कहानियां आपके इर्द-गिर्द ही होती है, वो कहानियां कुछ लोगों की नजर में आ जाती हैं, वो राइटर उनको लिखते हैं और किसी हकीकत तक पहुंचते हैं। वहां एक अच्छा माहौल आपको मिलता है, मतलब बिल्कुल ऐसा नेचुरल माहौल मिलता है जिसमें आपको कुछ करने को मिलता है कि हाँ भाई ठीक है। मुझे वैद्य जी का रोल मिला था, पहले रोल मिला था मेरे को जज का, इसके अंदर

0: उसके बाद मुझे रोल मिला इसमें वैद जी का, और वैद जी भी एक इस टाइप के, वैद जी के पैसे के लिए कुछ भी करना है।
1: अच्छा
0: तो उसमें ये है कि एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में, जैसे रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं, और वो गांठें अपने उसकी वजह से पड़ती हैं कि अपनी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती, या कोई ये चाहता है कि मेरी मेरी बड़ाई होती रहे परिवार के अंदर, बाकी के लोग ऐसे ही चलते रहें, और जहां कहीं दूसरे की भलाई की बात आती है, या कहीं किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, या कहीं कोई के मतलब ये समझ लो कि किसी की इनकम में फर्क आने लगता है, किसी की रेपुटेशन में फर्क आ, तो एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के बीच में ये रहा कि एक साजिश सी चल रही थी। आजकल तो हर एक सीरियल के अंदर आपको साजिश मिलेगी, तो वहां वहां क्या थी, एक मतलब परिवार की एक सदस्या दूसरी सदस्या को इस बात पे मजबूर कर रही थी कि माँ ना बने, तो वो मेरे पास आती कि मेरे को वैद्य जी कोई ऐसी दवा दे दो, बहुत परेशानी में हूँ, और ये कर दो वो कर दो। बाद में खुलासा होता है कि अरे मैं तो किसी साजिश का शिकार हो गया, मैंने उसको भी दवा दे दी, और ये क्या किया मैंने। तो ये कुछ बड़ा मजेदार रहा कुछ।
1: अरे वाह। अच्छा, मुझे समझा कि दूसरी बात से मुझे ये लगा था कोई सौतेली मावा का किस्सा होगा।
0: हाँ कुछ
1: नहीं,
0: कुछ
1: वैसा
0: ऐसा ही है, किसी ने
1: ऐसा
0: एडॉप्ट किया किसी को, लेकिन वो उसको
1: ही।
0: भाया नहीं, दूसरी दूसरी लेडी को ये नहीं भाया कि इसने इसको एडॉप्ट कैसे कर लिया। तो कुल मिलाकर के जब एडॉप्ट कर लिया तो बोले अब इसने एडॉप्ट कर लिया, अब इसके बच्चा नहीं होना चाहिए।
1: तो अतुल जी, कोई ऐसा रोल या करेक्टर जिसे करने की अब भी आपको ख्वाहिश है और कहता है यार ऐसा मेरे को कोई रोल मिल जाए तो मैं जरूर करूंगा, कोई है ऐसा?
0: बिल्कुल, अभी जो है ना मुझे करेक्टर एक्टर में कुछ मतलब ऐसा जो एकदम परिवार का मुखिया है, और मुखिया होने के बावजूद भी पूरे कमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार में बिखराव रहता है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है, ऐसा कुछ करेक्टर मुझे करना है। ये ऐसी तमन्ना है कि भाई वो बराबर परिवार से जूझ रहा है, कभी कहीं संकट खड़ा हो जाता है, कभी कोई संकट खड़ा हो जाता है, कुल मिलाकर की बात ये कि एक ऐसे करेक्टर की तलाश है मुझे।
1: नहीं, ये तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन चलिए आपके इस करेक्टर की तलाश के लिए हम एक गाना सुनते हैं स्टेज।

0: अतुलेश जी, आपने एक्टिंग के
1: जी
0: साथ कई नाटक लिखे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज भी किया है। इतनी
1: जी
0: क्रिएटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन आती कहाँ से है भाई, ये तो बताइए हमें।
1: बस यूँ समझ लो कि मैं करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। और मैंने एक कोशिश ये की है कि ना थकने की, कोई वो ऐसा होना चाहिए कि जहन में थकावट नहीं होनी चाहिए। ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, तो ये कोशिश ही रहती है कि। और दूसरा पीछे ये भी है कि मैं अपने पिताश्री का कुछ, अगर 0.05% भी कुछ करता हूँ तो अपने आप को सफल मानूंगा। क्योंकि मेरे पिता के विषय में जब मैं सुनता हूँ, उनके दोस्तों से सुना करता था कि हमारे पिता अपनी बगल में 8 संस्थाओं को दाब के चला करते थे और सबको समय दिया करते थे बावजूद अपनी नौकरी के। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम उतना एनर्जेटिक तो रहूं। और मैं ये सोचता हूँ कि कभी थक कर बैठ गया तो अपने घर लौट जाऊंगा, तो मैं थकने की कोशिश नहीं करता।
0: वाह क्या बात कही है। एक तरह से आपकी जितनी एक्टिविटीज है, जितनी एनर्जी है, अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट है। आप, वो आपके साथ रहते हैं और वो एनर्जी आपको मिलती रहती है और आप उससे काम करते रहे। क्या बात कही है आपने। पिता के लिए इससे बड़ी ट्रिब्यूट क्या हो सकती है। कोई बेटा ये कहे कि मुझे सब कुछ उनसे मिल रहा है, एनर्जी भी उनसे मिलती है। क्या बात है।
1: जी
0: स्कूल टाइम में आप बास्केटबॉल कैप्टन भी रहे हैं, क्या उस टीम वर्क का असर आपके थिएटर ग्रुप या स्टेज लाइफ पर भी पड़ा है?
1: बिल्कुल साहब, टीम वर्क तो आपका सब जगह काम आता है। मतलब एकाकीपन जो है ना, अकेला में एकला चलो वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। एकला चलो में तो मेरे ख्याल से मजा नहीं है। जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो सफलता जो सबको मिलकर के जो प्रसन्नता रहती है ना, उसका मुकाबला नहीं है साहब।
0: सही कह रहे हैं। चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे इवन बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इतने बड़े टीम वर्क ही इनको सबको बनाता है। यही एसेंस है इस सारे काम का। क्रिएटिव कोई भी काम होगा, अकेले बहुत कम चीजें होती हैं। पेंटिंग भले ही आप अकेले कर लो, लेकिन ये जो मीडिया है, ये सारा टीम वर्क का है। बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया।
1: बिल्कुल सर, हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा साहब उनका। हमारे मित्र हैं पंडित हरिहर शरण भट्ट, सितार वादक जो हैं। उनके मुंह से एक वाक्य सुना मैंने, जब से वो मेरे 2003 के 2001 के अंदर मेरे टच में आए थे, मैं उनके संपर्क में आया, तो उनके मुंह से एक बात हमेशा सुनता हूँ कि अतुल जी भाई साहब, मैंने पैसा तो अपनी जगह कमाया है सो कमाया, लेकिन मैंने आदमी कमाए हैं। अपने व्यवहार से किसी आदमी का आप दिल जीत लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये मैंने उनसे सीखा था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। भट्ट जी का नाम बहुत मशहूर है और बहुत आला दर्जे के कलाकार है।
1: जी
0: आपने प्रशासनिक क्षेत्र और कला दोनों में बेहतरीन काम किया है। आपकी नजर में आपको सक्सेस या सफलता की क्या परिभाषा है, क्या क्या कहेंगे आप इसको? अगर
1: सफलता की परिभाषा यह है कि जो काम मिले प्रसन्नचित्त होकर के उस काम में जुट जाओ। अगर आपसे वो काम नहीं होता है, शुरुआती दौर में ही आपको लगने लगता है कि ये काम आपके उसमें नहीं है, तो आप उसको सीधे सीधे मना कर दो कि भाई ये काम मेरे बूते का नहीं है। अगर आपने काम हाथ में लिया है तो उसको प्रसन्नता पूर्वक निपटा दो। और जहां आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है, टीम का सहयोग जरूर लेना चाहिए।
0: अभी अगर यंग लोगों को कोई आप एक मैसेज देना चाहें जो अपने जॉब के साथ पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? एक छोटे से मैं कुछ बताइए हमें।
1: जब भी काम करें तो कभी तैश में या डिप्रेशन में ना आए, काम करें, उसको काम को एंजॉय करें।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर बात कही आपने। छोटी सी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात। अब हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अतुलेश जी, आज आपके साथ बातचीत करना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। आपका जीवन ये सिखाता है कि अगर जुनून सच्चा हो तो कोई उम्र, कोई काम, कोई सीमा आपको अपने सपनों से नहीं रोक सकती। रेलवे की ड्यूटी से लेकर मंच और कैमरे की चमक तक आपका सफर मेहनत, लगन और कला से भरा हुआ है। आप जैसे कलाकार आज भी नई पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पैशन कभी रिटायर नहीं होता। अतुलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आज मुझे, आपने मेरे से संपर्क किया, बातें साझा हुई और एकदम रिफ्रेश हो गया। ये यकीनन ये मानिए है कि मैं वाकई में अपने आप को और ज्यादा यंग महसूस करने लगा हूँ आपके साथ बात कर।
0: वाह, क्या बात है। और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए इंसान के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हर आवाज के पीछे होती है एक कहानी।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: कोयले की कहानी।
6: दोस्तों, जरा पहचानिए तो ये आवाज किसकी है। पहचानिए, पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: फंदे से फंदे से फंदे से रस्सी कहे अचंभे से
1: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
0: मेरा धागा तेरे पास सदा मिलेगी तुझको खास।
2: बड़ मक्कड़ बम्बे बाओ बम्बे बाओ बम्बे बाओ
3: कड़
2: मक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबवा की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा, कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना
1: है काका? आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी।

0: ही है। सुन तू जा, आज तू ही पशु चराला।
1: काका मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शर्मा, ओ शंभू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चला चला चला, हे हा।
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठ ना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू,
5: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना, किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं, तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा, मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
3: चलो चलो चलो,
7: अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
4: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
7: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
4: वो काका शंभू है ना, उसके पशु खेत में घुसाए थे।
7: और शंभू कहाँ था?
4: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
7: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
4: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
7: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
4: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
7: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
1: मेरे पास लाठी है ना,
7: हाँ।
1: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
7: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो।
3: चलिए काका, चल शेरू, आ।
2: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
7: शंभू, अरे ओ शंभू,
3: अरे ओ शंभू,
5: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया? सोने नहीं देता
3: क्या है?
7: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूँ। और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
5: आप मुखिया साहब, आप आपके खेत किसने उजाड़े?
7: मुझसे पूछ रहा है। तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
5: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
3: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: तू चुप रह, तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
7: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
5: लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं?
7: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
5: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
7: अच्छा चल जा, और देख,
5: हाँ?
7: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना।
5: जी।
7: किसी और के खेत में ना घुसे।
5: जी।
7: हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ।
5: जी।
7: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
5: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
7: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
3: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
7: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
3: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू, आ। इधर
2: इधर। किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
0: मेरा किशन बड़ी काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया। और दूसरे की खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश
4: काका।
0: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
4: अच्छा काका, चल शेरू आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
1: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
2: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा,
3: कौन हो तुम?
2: मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था।

कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाई आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी।
उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब न। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे 4 गुना लंबा चौड़ा।
सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और

0: तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा। इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।

0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
1: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: किसने की तुम्हारी ये हालत?
1: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC

0: है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
1: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः।

से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल,

इया से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गांव, जहां।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार हैं, जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं

0: उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
2: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
1: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
0: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
1: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
3: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
1: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
4: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
5: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहली, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें, जिससे कि गर्मी को, तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें, जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
1: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
5: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं, तो उनमें

0: पक्षियों में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स, किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
1: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
2: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
3: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
1: गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
4: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा। उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाउ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए

0: जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
1: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
0: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें एक बीघा में 7 किलो बीज डाला है और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में एक थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
1: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
0: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है, ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं, बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा, इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
2: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है, फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
1: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
2: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृतिक कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
1: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
3: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष सांग में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
4: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ।

0: इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है, इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों, समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो।

0: से घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
1: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है, जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं, वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं, अगर इन कैटेगरीज में आते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
0: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
1: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
0: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
0: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
2: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों, प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है। हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
0: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना,

0: काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं, जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपने कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: गई।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम बात करते हैं सेहत की, सोच की और जिंदगी की, जो हम रोज जीते तो हैं बट कई बार रुकना भूल जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी वेलनेस कोच हैं जो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की बात नहीं करती बल्कि जीने का तरीका सिखाती हैं। हेल्थ कोच, लाइफ कोच, पब्लिक वेलनेस कोच और एक बहुत ही पॉजिटिव क्रिएटिव सोल, मानसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग पर।
1: थैंक यू सो मच तनुषा जी, थैंक्स अ लॉट।
0: हम शुरू करते हैं। मानसी जी, आप एक हेल्थ कोच हैं, एक लाइफ कोच हैं और एक पब्लिक वेलनेस कोच हैं। इन तीनों का अगर हम समागम करते हैं तो इस रोल को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगी? हमारी लिसनर्स के लिए थोड़ा समझाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं और किस तरह आपकी ये जर्नी शुरू हुई और आपके लिए वेलनेस का सही मायने में मतलब क्या है? आज के जमाने में, आज के दौर में वेलनेस का मतलब क्या है?
1: मैं अगर कुछ लाइनों में इसको डिफाइन करूं तो मैं एक सारथी वाला रोल प्ले करती हूं बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर, उनको सही लाइफस्टाइल में हेल्प करने के लिए, उनके सही फिटनेस को अचीव करवाने के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों को पता तो होता है करना क्यों है, कैसे करना है, बट कई बार एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वी वर्क एज अ सपोर्ट फॉर देम, जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं लाइफ लॉन्ग अपनी आइडियल बॉडी फिटनेस को मेंटेन करने में, और नॉट जस्ट बॉडी फिटनेस को, पर जब हम बात करते हैं वेलनेस की, तो धनुषा वेलनेस सिर्फ हम अगर किसी के बॉडी को फिटनेस के रूप में देखकर समझना चाहे तो शायद वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है, बट द रियल वेलनेस इज अगर हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर चीज को अगर हम सही तरीके से फिगर आउट करके उसको परफेक्ट मायने में या नियर टू परफेक्ट मायने में हम जीना शुरू करते हैं, दैट इज एक्चुअली वेलनेस। और हम एज अ वेलनेस कोच बस लोगों को इसी जर्नी को जीने में, इसी जर्नी को जीतने में हेल्प करते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन क्या आपको कभी कभी लगता है कि आज के जमाने में आपका जॉब बहुत टफ होता जा रहा है, इस वेलनेस के इस डेफिनेशन को अचीव करना जिस लाइफ में हम रह रहे हैं, क्या आपको चैलेंजेस आते हैं कुछ इसको अचीव करने के लिए कि हाँ हम नियर परफेक्ट, आपने सही कहा, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बट नियर परफेक्ट जाने के लिए आप अपने आप को कैसे फ्यूल करती हैं कि इस वेलनेस को अचीव कर सकें?
1: इनडीड, ये बहुत टफ है आज के लाइफ के अंदर, क्योंकि हम कोई भी चीज जब अचीव करने की कोशिश करते हैं या करवाने की कोशिश करते हैं तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं। और आजकल की लाइफ के जो मेजर डिस्ट्रैक्शंस है वो है लोगों का स्ट्रेस, लोगों का वर्क स्टाइल, हमारा वर्क स्टाइल, हमारे खाने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका, ये सब बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से कई बार हमारे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं पर लोग समझ नहीं पाते। एंड इसके साथ में प्रायोरिटीज, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारी लाइफ में हम हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम हमारे जॉब को, काम को, बिजनेस को, घर को, बच्चों को, अगर वाइफ है तो हस्बैंड को, हस्बैंड है तो अपने काम को, हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, पर हम खुद को प्रायोरिटी पे कभी नहीं रखते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हमें इस फील्ड में काफी सारा चैलेंज आता है लोगों को सही गाइड करने में, बट देन ये हमारा काम है और हम हमेशा चाहेंगे कि हम लोगों को इसी तरीके से गाइड करते रहें।
0: जी जी, तो एक तरह से कहा जाए तो काउंसलिंग और मोटिवेशन भी आपके प्रोफेशन में आपको बहुत काम आती होगी। जैसे आपने हमें बताया कि आपने 25,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ को टच किया है, 15 स्टेट्स और 6 कंट्रीज में आप अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा इम्पैक्ट जब आप देखते हैं तो कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि हाँ ये सब मतलब मैं कर रही हूँ, मैंने ये जर्नी शुरू करी, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस बात पे चलूंगी, तो आज आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये सफर वर्थ इट है, जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां आपको लगता है कि आप पहुंच पा रहे हैं अपने एफर्ट से?
1: बिल्कुल, ये हर रोज महसूस होता है, क्योंकि जब आपके हम उम्र, आपसे बड़े, आपसे छोटे, हर सुबह हमारी शुरुआत करवाते हैं थैंक यू से, तो ये हमें हर रोज महसूस होता है, क्योंकि हमें बहुत बार हमने ऐसे काम देखे हैं जहाँ पे लोग अपना काम तो कर देते हैं पर उनको उतना ग्रैटिट्यूड या उनको उतना थैंकफुलनेस नहीं दिया जाता है। पर जब हम अपना ये वाला काम कर रहे हैं और जब हमारी हर सुबह जब हमारा व्हाट्सएप ओपन करते हैं, हमारा मैसेज ओपन करते हैं, हमारा कॉल्स उठाना शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला शब्द हमें सुनाई देता है वो होता है थैंक यू सो मच मैम. और उस थैंक यू के पीछे बहुत सारी चीजें वो जो अपनी लाइफ में सही कर चुके होते हैं वो छुपी होती है. बहुत सारे लोग बहुत सारे कई सालों से तकलीफ में होते हैं, बीमारियों से घिरे हुए होते हैं, दवाओं पर निर्भरता बना के रखते हैं. तो जब वो इन सबसे छुटकारा पाते हैं और एक कहते ना नम आंखों से भरी हुई आवाज से जब वो हमें थैंक यू बोलते हैं तब हमें वाकई में लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं ये वर्थ इट है, ये एब्सोल्युटली वर्थ इट है.
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपके. और सच में आपने जैसे कहा कि आप एक सारथी का रोल निभा रहे हैं, तो कभी कभी जिंदगी हमें रुक कर खुद से मिलने का मौका देती है और साथ में एक जीवन साथी की जगह एक सारथी देती है जो हमें रास्ता दिखाता है, जो कई बार हम खुद जानते हुए बूझते हुए देख नहीं पाते और हमारे आंखों के सामने कई बार धुंधला छा जाता है, कई बार परेशानियां आ जाती हैं, कई बार वर्कलोड आ जाता है. तो कोई ऐसा जो आपका हाथ पकड़े और आपका रास्ता साफ करे और आपको आगे का रास्ता दिखाए, वो आज के जमाने में, वेलनेस के जमाने में कितना जरूरी है. इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, उठे सबके कदम देखो रम पम पम.
2: उठे सबके कदम देखो रम पम पम. सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मानसी जी। मानसी जी, आपने हमें बताया कि आपकी जिंदगी का बहुत एक गहरा पल था, जो एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, जब आप कभी किसी एक लम्हे में, एक मोमेंट में एक मेडिसिन ले रहे थे और आपकी बेटी ने आपसे वही मेडिसिन मांगी कि मैं ये खा सकती हूँ क्या। उस सवाल ने आपने हमें बताया कि आपके जीवन का डायरेक्शन बदल दिया। तो उस समय वो किस तरह से उस सवाल ने आपको अंदर से महसूस करवाया, और जब ये महसूस हुआ आपको, तो ये डिसीजन आपने किस तरह से लिया, मतलब सबसे पहला स्टेप आपका क्या था कि ये नहीं एक्सेप्टेबल है, इसको मैं चेंज करना चाहूंगी, और इसी से कनेक्टेड में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अपना पहला कदम रखूंगी। वो क्या मोमेंट था, वो क्या टर्निंग पॉइंट था, वो किस्सा हमारे साथ थोड़ा शेयर करें।
1: वाकई तनुषा, वो पल है ना, मुझे आज भी झकझोर देता है जब मैं वो पल एक बार के लिए वापस जहन में आता है और इस बारे में सोचती हूँ। और उस दिन यूजुअली बच्चों की आदत होती है कि जो वो हमें कुछ भी खाता देखते हैं, पीता देखते हैं, तो बच्चों की आदत होती है हमें भी दे दो, हमें भी टेस्ट करना है। तो उस

0: वक्त मैं अपने बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स के साथ चल रही थी, जब मुझे बहुत डॉक्टर ने हैवी मेडिसिन और स्टीरोइड सजेस्ट किए हुए थे और मैं उस वक्त वही ले रही थी एंड सडनली वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा मम्मी मुझे भी ये खाना है। और वो पल ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि हम कभी भी ये सोच नहीं रहे कि हमारे बच्चे हमें क्या करता हुआ देख रहे हैं और वो भी वही चीज करना शुरू कर देते। वो पल मेरे लिए बड़ा ही झकझोर देने वाला था और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ में इतनी सारी मेडिकेशंस पर डिसऑर्डर पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं परिवार के लिए भाग रही हूँ, मैं कमाने के लिए भाग रही हूँ, मैं मेरे बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए भाग रही हूँ। पर मैं ये भूल चुकी थी कि अगर मैं इतना सब कुछ जुटाने के लिए भाग रही हूँ और ये भूल चुकी हूँ कि मेरे बच्चे के लिए उसकी रियल वेल्थ उसके हेल्दी पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के लिए रियल वेल्थ उनके हेल्दी बच्चे हैं, ये मैं भूल चुकी थी और इसलिए मैं सारी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना शुरू कर चुकी थी। बट उस वक्त जब मेरी डॉटर ने मुझे वो मेडिसिन खाने के लिए बोला कि मुझे भी वो खानी है, तब मैंने अपना एक डिसीजन बनाया कि मुझे अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी इकट्ठा करना है, जो कुछ भी मुझे वसीयत तैयार करनी है मेरे बच्चे के लिए, वो उस वसीयत में सबसे पहली चीज हेल्थ होनी चाहिए क्योंकि जो मेरे पास खुद के पास नहीं होगा वो मेरे बच्चे को मैं कभी दे ही नहीं पाऊंगी। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है, मुझे अपने आप को फिट बनाना है, मुझे अपने आप को एक अच्छी जीवन शैली में लेके जाना है क्योंकि अगर ये मैं नहीं कर पाई तो मैं अपने बच्चे को कभी ना ये करने के लिए कह पाऊंगी ना मैं उसे सिखा पाऊंगी। तो दैट यस दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ।
1: बहुत ही गहरी बात आपने बताई कि सच में हमारी सबसे बड़ी लेगेसी हम जो हमारे बच्चों को पास ऑन करेंगे वो हमारी गुड हेल्थ और वेलनेस है, इससे बड़ी लेगेसी कुछ हो नहीं सकती। और सच है कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर एक हेल्दी मदर है एक हेल्दी फादर है तो बच्चों में अपने आप वो आदतें डाउनलोड होती हैं अच्छा खाने की, अपने हेल्थ पे ध्यान रखने की, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात जानती हूँ और आज आपसे ये बातें सुन के मुझे खुद फिर से वो बात याद आ गई जब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में ये समझ आया कि किस तरह से अगर एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी फादर और एक घर में ये माहौल मिले बच्चों को तो बच्चे किस तरह से वेलनेस की इंपॉर्टेंस समझते हैं और जानते हैं और उसी तरह से उनका लाइफ मैप उनकी खुद की वेलनेस शेप होती है। तो बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ साझा की। आप हमेशा ये कहते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए सेविंग्स करते हैं, जैसे अभी आपने बताया प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर का सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करते हैं, बट आप कहते हैं कि रियल वेल्थ इज अ हेल्दी मेडिसिन फ्री लाइफ। जो सही हमारा वेल्थ है, जो सही हमारी कमाई है हमारे बच्चों के लिए, वो एक अच्छी सेहतमंद बिना दवाइयों के जो एक जीवन हम उनको दे सकते हैं वो है। तो आज के पेरेंट्स, क्योंकि आप डील करते होंगे आई एम श्योर आपके पास उस एज ग्रुप के भी बच्चे आते होंगे जहाँ पे पेरेंट्स उनसे परेशान हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, उनके हेल्थ के लिए परेशान हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप जब उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, मतलब क्या, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग जहां पे हमारे लिए हेल्थ आज इतना बड़ा एक इशू एक समस्या बन चुकी है, अगर आप हमारे लिसनर्स के साथ साझा करें।
0: बिल्कुल, ये बहुत डे टू डे हम लोग इन सारी चीजों से डील कर रहे हैं। रीजन बीइंग चाइल्डहुड ओबेसिटी आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ा मेजर हेल्थ कंसर्न बन चुका है क्योंकि जैसे जैसे एरा बदल रहा है, समय बदल रहा है, बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा बदलती जा रही है। बट हम अक्सर है ना बच्चों को ब्लेम कर देते हैं, मेरा बच्चा ये खाता नहीं है या मेरा बच्चा बिना टीवी के नहीं देखता, मेरे बच्चे को चिप्स सबसे पहले चाहिए या मेरे बच्चे को रोज का एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और मैं उन पेरेंट्स से अक्सर सबसे पहला सवाल यही करती हूँ कि जब आपने सबसे पहले आपके बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दी थी तो क्या आपका बच्चा खुद दुकान से जाके लेकर आया था या आपने लाके दी थी उसके सिर पे? तो यानी कि हम खुद गलती की शुरुआत करते हैं और उसका सबसे बड़ा बैकहैंड रीजन ये है कि हम खुद उस तरीके की गलती को करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए वो बच्चे उसके अडिक्टेड हो जाते हैं। तो अक्सर हम पेरेंट्स यही गलती रोजमर्रा के जीवन में भी करते थे, जैसे हम बच्चों को अक्सर बोलते हैं आप आलस मत करो, पर हम खुद ही पेरेंट जब वर्कआउट की बात आती है तो आलस कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम बच्चों को बोलते हैं बेटा रात को जल्दी सोया करो, पर हम खुद हमारा व्हाट्सएप का जब लास्ट सीन देखते हैं तो 11 या 12 1 बजे का होता है ना। हम खुद बच्चे को बोलते हैं चलो आज बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, हम बाहर से जब खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारे खाने में पिज्जा पास्ता जैसी चीजें हम ऑर्डर करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हम बच्चों को बोलते हैं कूल ड्रिंक मत पियो, है ना, आपने बहुत सारे ऐसे ठंडी ड्रिंक्स नहीं पीनी है, पर खुद हम एज अ पेरेंट चाय के एडिक्टेड होते हैं, हम चाय के बिना रह नहीं पाते। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हम अक्सर बच्चों की लाइफ में गलत एग्जाम्पल सेट करने से शुरू करते हैं, एंड देन बच्चों के जब शरीर में इससे बदलाव आना शुरू होता है, तो एज अ पेरेंट क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं होती, तो हम इन सारे बदलाव को इग्नोर भी करना शुरू करते हैं, तो बच्चों को भी मेडिसिन पे डाल देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो एज अ पेरेंट ये हम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं कि हम बच्चों की इम्यून सिस्टम के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बच्चों के एपेटाइट के साथ खेलना शुरू करते हैं। तो एज अ पेरेंट ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, बहुत ही क्लोजली आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप इतना क्लोजली डील करते हैं इन इश्यूज से, कि सच में हम एग्जाम्पल्स ही गलत सेट कर रहे हैं, तो हम बच्चों को क्यों ब्लेम करते हैं, क्यों हम नहीं समझ पाते कि हम जो करेंगे वही बच्चे अपनाएंगे, वही देखेंगे, वही सीखेंगे, और एक एक अपनी शैली में, अपनी जीवन शैली में आपको चेंज लाने की जरूरत है, और एक सही एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वही उनकी सोच बदल सकती है, वही उनकी जीवन शैली बदल सकती है, वही उनकी आदतें बदल सकती है एक सुंदर और एक एक एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो इसी नोट पर हम सुनेंगे, जब सोच बदलती है तो जिंदगी का रास्ता भी बदल जाता है। इसी भाव के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गाना, ओरे ताल मिले नदी के जल में।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मानसी जी।
1: थैंक यू वंस अगेन
0: जी। आपने हमें बताया कि आप रिसर्च बहुत करते हैं और रिसर्च बेस्ड स्टडीज, लर्निंग्स, केस स्टडीज, इन सब से अपने आप को अपडेट रखते हैं जब आप काम करते हैं, और आपको लगता है कि इस सारी इंफॉर्मेशन के बीच आपको अपडेटेड रहना, आपकी रिसर्च ड्रिवन रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे कंफ्यूज हो जाएं या वो आपके काम में इम्पैक्ट डालें। आप कैसे डिसाइड करते हैं इस सब रिसर्च, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में रह रहे हैं, हम यू नो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में रह रहे हैं, तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सही है, क्या है, क्या नहीं है?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और आजकल ये जो ट्रेंडिंग वाला जमाना चल रहा है उसमें वाकई में इट इज वेरी टफ टू चूज द राइट थिंग फॉर यू, बट क्योंकि सभी ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं तो कई बार हमें अपनी चीजें भी ट्रेंड के थ्रू ही लोगों तक पहुंचानी पड़ती है ताकि वो जागरूक हो सके। और रही बात जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है उसमें से राइट एंड रॉन्ग को चूज करना या व्हाट इज गुड फॉर यू या आपके लिए क्या ज्यादा चीजें फायदेमंद होती है, तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ मैं उन चीजों को जरूर ऑप्ट करूँ जो मुझे मेरे पॉजिटिव माइंडसेट को बूस्ट करने में हेल्प करे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को और ज्यादा प्रमोट करने में हेल्प करे, मुझे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाए। एंड आई वुड सजेस्ट हम सब भी जो भी इन ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं हमें उस हर ट्रेंड से, देखिए हर ट्रेंड जरूरी नहीं खराब हो और हर ट्रेंड जरूरी नहीं अच्छा हो, बट ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो ट्रेंड आपको हेल्दी बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बना रहा है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वो सभी चीजों के हमेशा दोनों पहलुओं को देखते हुए उसमें से बेस्ट एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे जैसे अगर हम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो उन दोनों पहलुओं को जज करना, उससे अपनी जीवन शैली के अनुरूप हम कितना बेस्ट ढाल सकते हैं उसे देखना, सही जीवन शैली में आपके लिए वो ट्रेंड कितना ज्यादा फायदेमंद होगा वो भी देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम इसीलिए बहुत सारे ट्रेंड्स को कई बार फिल्टर में डाल देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी हटा देते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं करती डेफिनेटली हमें उसे इग्नोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रेंड जो पैटर्न हमें हेल्प करें उसको अपनाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। क्या कोई ऐसा ट्रेंड या ऐसा कॉज है जिसके लिए आप बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें कि आजकल जो चल रहा है उससे डील करने का क्या तरीका है, कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: बिल्कुल, आजकल का एक बड़ा मेजर मुद्दा चलता है जहाँ पे हम बात करते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फूड की, बिकॉज मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि नेचुरल फूड आर द बेस्ट फूड, और इनडीड बहुत ज्यादा ट्रेंड किया जाता है कि नेचुरल फूड ही खाना चाहिए, किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स या किसी भी प्रकार का हमें एक ऐसा सोर्स नहीं अपनाना चाहिए जो आउटसोर्स करना पड़ रहा है। तो कई मायने में कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं, और हम अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये ना पूरी तरीके से सही है ना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमारे भोजन में आज जो आज का भोजन है उसमें पहली वाली बात नहीं रही है, आज की जो जीवन शैली है वो भी पहले जैसी नहीं रही है। पहले के लोग बहुत सारा घी खा के भी अपने फिजिकल एक्टिविटीज से अच्छे रखते थे कि वो घी पचा लेते थे, पर आजकल के टाइम पे ना घी इतना शुद्ध है और ना हमारे फिजिकल एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग, तो हमें कहीं ना कहीं फूड के मामले में और जीवन शैली के मामले में ये चूज करना और चॉइस सही रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम सिर्फ एक नेचुरल भोजन के पे निर्भरता बनाते हुए अपने शरीर को इग्नोर ना कर दे और ना पूरी तरीके से सिर्फ किसी सप्लीमेंट पे डिपेंडेंसी बनाते हुए अपने भोजन को इग्नोर कर दे। तो ये जो तालमेल है ये बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से बैठा पाना।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। आप ये भी कहती हैं और मानती हैं कि आप कुछ भी चीज सिंपल नहीं कर सकती और हर चीज में अपना तड़का डालती हैं, जैसे आपने हमें बताया। तो डांस, म्यूजिक, बातें, ये सब पॉजिटिविटी, ये क्रिएटिविटी आपकी कोचिंग और आपकी लीडरशिप को किस तरह से बढ़ावा देती है, कैसे आपको अलग और पावरफुल बनाती है आपके काम में?
1: इंडीड, थैंक यू सो मच तनुषा इस चीज को मुझे फिर से याद दिलाने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की क्रिएटिविटी की या किसी भी चीज को अलग तरीके से पेश करने की, क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं, पर अक्सर एक ही तरीके से बार बार सुनने से या बार बार दोहराने से हम उस चीज से ध्यान हटाना शुरू कर देते हैं। पर अगर हम उसी बात को कभी कभी अलग अंदाज में, अलग कहानी के रूप में या अलग लाइफ लेसन के रूप में बताते हैं, तो लोग फिर से उस तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। बहुत एक बेसिक एग्जांपल है, आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे बड़े पुराने जमाने के गाने फिर से ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अलग डांस का स्टेप डाल दिया गया, उसमें थोड़ी सी बीट ऐड कर दी गई। तो वही जो पुराना गाना जो कभी किसी ने शायद बहुत कम सुना होगा या उसमें बहुत कम ध्यान दिया होगा, पर उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी का और अलग टीम का तड़का लगा और वो ट्रेंड हो गया। तो इसीलिए अगर हम चीजों में थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर देते हैं, तो डेफिनेटली हम काफी अच्छे तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और एज अ लीडर मैं ये पर्सनली मानती हूँ, बिलीव करती हूँ कि एक लीडर को रेनबो की तरह होना चाहिए, कि एक लीडर के पास

0: बहुत बड़ी टीम होती है और उस टीम में बहुत सारे अलग अलग नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं और हम हर किसी को एक ही तरीके से नाप तो नहीं सकते और एक ही तरीके से हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। तो पर जब एक लीडर एक रेनबो पैटर्न का व्यक्ति होता है तो वो बहुत आसानी से अपने लोगों के साथ अपनी टीम के साथ काम कर पाता है और उसे लीडरशिप मैनेज करना काफी आसान हो जाता है।
1: बहुत ही खूबसूरत जवाब। और ये एक नई हमने सीख आज सुनी है, सीखी है कि लीडरशिप एक रेनबो एक इंद्रधनुष की जैसी होनी चाहिए, क्योंकि सच है कि एक लीडर को हर तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो अगर उनमें वो सतरंगी रंग नहीं होंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि हर तरह का व्यक्ति क्या चाहता है, किस तरह से हैंडल हो सकता है, किस तरह से उसकी एनर्जीज उसकी जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको रीच कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें बताया, जब दिल खुश होता है तो थकान भी मुस्कुरा जाती है और पीछे से हार जाती है। इसी एनर्जी के साथ, इसी क्रिएटिविटी के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है।

0: वेलकम बैक श्रोताओं। मानसी जी, आज के दौर में फिजिकल वर्कआउट तो सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है, बट मेंटल एक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप तीन कोई सिंपल डेली हैबिट सजेस्ट करना चाहें, जो बिना प्रेशर के आप अपने माइंडसेट को, बिकॉज आई थिंक हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका माइंडसेट है। आप हेल्दी तो फिर भी हो जाएंगे अगर आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट उसको रेगुलरिटी से करने के लिए, उसको खुश होके करने के लिए, उसको क्रिएटिवली करने के लिए, जैसे कि आपने अपने बारे में बताया, खुश रह के उस चीज को करने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट की जरूरत है। तो उस माइंडसेट को एज अ वेलनेस कोच अगर ठीक करना हो तो आपके क्या सिंपल डेली तरीके होंगे जो हमारे लिसनर्स बहुत आम जिंदगी में कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डेली में अपनी कुछ आदतों को बदलें या डेली अपनी आदतों को कुछ फॉलो करें जो हमें लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने में हेल्प करती है। क्योंकि आप कुछ भी अचीव करना चाहेंगे उसके लिए ब्रेन का ट्यून होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कुछ ऐसी हैबिट्स है तनुषा जी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो शेयर करने पे। मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ क्योंकि अगेन हम जो भोजन करते हैं उससे हमारा पूरा बॉडी बन रहा है, तो हम कैसा भोजन ले रहे हैं वो तय करता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी जाने वाली है। तो मेरा एक मानना है कि जो मन को भाए उसे कम खाए और जो शरीर को भाए उसे ज्यादा। तो ये मेरा हमेशा एक रूल रहा है क्योंकि हम अक्सर है ना ऐसे फूड को देख के बड़ा टेम्पटिंग और क्रेविंग वाली फीलिंग आती है कि ये बड़ा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत सारा खाना है। पर जो हमें क्रेविंग दे ऐसे भोजन से हमें थोड़ा दूर रहना जरूरी है, तो बस उसे मन भरने के लिए खा लीजिए और जो शरीर को स्वस्थ बना रहा है उस भोजन को पेट भर के खाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके माइंड सेट को डेवलप करने के लिए सबसे पहला।
0: जी
1: बिल्कुल। दूसरी हैबिट मैं जो हमेशा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ वो मैं लिखने की बड़ी कोशिश करती हूँ। मैं अपनी आदत बनाए रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज लिखूँ। मैं लिखूँ कि मैंने आज क्या किया, मैं लिखूँ कि मुझे अचीव क्या करना है। अगर हम हर रोज हमारे ब्रेन को ये याद दिलाएं कि मुझे क्या अचीव करना है और मुझे मैं क्या अचीव करने के लिए काम कर रही हूँ, तो ये मैनिफेस्टेशन ये बड़ा हेल्प करता है और हमें बहुत स्ट्रांग वाइब्स देता है जिसे हम कभी भूलते नहीं है। क्योंकि अगेन डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हमारी लाइफ में, पर अगर हम लिखते हैं बार बार तो हमारे ब्रेन को बार बार ये मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है और हमें इसकी तरफ आगे बूस्ट में बढ़ाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं अपनी दूसरी हैबिट जो बड़ा फॉलो करती हूँ है लिखने की। और तीसरी हैबिट जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो है कि हमें लाइफ में बहुत कुछ पाना होता है, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर हम अक्सर सपनों को सपनों की तरह छोड़ देते हैं। अगर हम अपने उस सपने को अचीव करना चाहते हैं तो उसे लक्ष्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने सपनों के ऊपर तारीख लिख देने से वो लक्ष्य बन जाते हैं। तो मैं जब भी कोई चीज अपने जिंदगी में एक सपना देखती हूँ या कुछ अचीव करने के लिए डिसाइड करती हूँ तो मैं उसके नीचे तारीख जरूर लिख देती हूँ और हर रोज छोटे छोटे छोटे कदम लेती हूँ। बहुत बार अक्सर लोग अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर अचीव करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ बड़े कदम लेने की कोशिश करते हैं और कई बार थक जाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अपने सपनों को तारीख देके उसे लक्ष्य बनाइए और छोटे छोटे कदम रोज लीजिए और उसे पूरा कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने सपनों को तारीख दें, अपने सपनों को एक लिखावट, एक एक एक डायरी में उतारें, उसको एक विजन बोर्ड की तरह उतारें और मन भरने के लिए नहीं अपने तन के लिए भोजन खाएं और सही और स्वस्थ भोजन खाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैबिट्स अगर आप करते हैं तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप खुद से रिजॉल्व को और बेहतर बना रहे हैं। और अगर आप इसको स्किप करेंगे, अगर आप इसको मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट होगा, जो बहुत जरूरी है कि शायद एक दिन आपने स्किप कर लिया, अगले दिन आप फिर अपने गोल्स पे वापस जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उन्हें लिख रहे हैं, उस पर एक तारीख डली हुई है और आप मानते हैं कि मुझे अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपको और पुश करेगा। तो बहुत ही खूबसूरती से मानसी जी आपने हमें बताया कि किस तरह से हम हमारी डेली लाइफ में हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुछ सिंपल कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा कर सकते हैं उनको अचीव करने के लिए सिंपल तरीके से। और आप अंत में मुझे बताएं कि आपने हमें ये भी बताया कि आप अकेले में भी खुश रहते हैं और आप कंपनी में भी खुश रहते हैं, आप भीड़ में भी उतने ही एक्साइटेड और हैप्पी और सेल्फ प्रोपेल्ड रहते हैं जितने आप अकेले में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है, बहुत रेयर क्वालिटी है, जो सब लोगों में नहीं होती। अक्सर लोग भीड़ में भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप से भाग रहे होते हैं। तो हमारा कोई लिसनर जो आज ये महसूस कर रहा है कि मैं तो सबके लिए हूं बट मेरे लिए कोई नहीं और वो अकेलापन उनके जीवन में है, तो आप उसे एक लाइन में क्या कहना चाहेंगी कि वो अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई कर सके और अपने साथ रहना कंफर्टेबल फील करके अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर सके?
1: बिल्कुल, ये ना जीवन का सच है। अगर आप खुद अपने लिए सबसे पहले नहीं है तो आप कभी किसी के लिए पूरी तरीके से हो ही नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को अपने लिए जी भर के जीना है ताकि आप दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा बना पाओ, और ना भी बना पाओ तो आप अपने जीवन को इतना जी भर के जी रहे कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अक्सर परमात्मा भी उसी का साथ देते हैं जो खुद पहले अपना साथ देता है। हमें कई बार लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए सेवा करना चाहते हैं, दूसरों के लिए खड़े रहना चाहते हैं, पर आप पहले खुद को मजबूत बनाएं। क्योंकि जो इरादों से भूखा है, जो लक्ष्य से भूखा है, जो सेहत से भूखा है, खुशियों से भूखा है, वो व्यक्ति कभी किसी का पेट किसी भी सूरत में नहीं भर पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें बहुत बड़ी कोशिश करने की जरूरत है कि पहले हमें इन सभी तरीकों में खुद को पूरी तरीके से प्यार करना, खुद को पूरी तरीके से समझना, खुद को पूरी तरीके से समय देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्वयं को ये सब कुछ दे दिया तो आप बहुत आसानी से लोगों को दे पाएंगे और लोग भी उन्हीं लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं जो ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही और बहुत ही सटीक जवाब आपने हमें दिया कि सच है कि आप अकेले ही हैं, अल्टीमेटली अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो अगर आप खुद के लिए नहीं हैं तो आप किसी के लिए नहीं हैं। आप एक खाली ग्लास से पोर नहीं कर सकते, तो अपने आप को भरें और इतना भरें कि आप ओवरफ्लो करें और दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला सकें। वो वो एक एक एक खुशी और एक ड्रीम्स उनकी लाइफ में, एस्पिरेशंस उनकी लाइफ में ऐड कर सकें अपने ओवरफ्लोइंग वेसल से। बिकॉज कोई भी बिना खुद भरे कुछ दे नहीं सकता किसी को। आपसे आज की बातचीत मानसी जी हमें ये याद दिलाती है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी का नहीं, सोच और जज्बात का मामला है। और दोस्तों आज आपने एक छोटा सा थॉट भी अगर हमारी कॉन्वर्जेशन से पिक किया हो और अगर आपको इंस्पिरेशन मिली हो तो समझिए आज का एपिसोड सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच मानसी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच अनुषा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट रियली मीन्स अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस कॉन्वर्जेशन में, थैंक यू सो मच।
0: सेम है मानसी जी, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के दम गीतों के संग। सेहत चुनिए, खुशी चुनिए और खुद को कभी भी लास्ट प्रायोरिटी मत बनाइए। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: हूँ से आरजे भावना, आप पढ़ंगले भाइयों नु घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 10 टेबल 90.8

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है थिएटर या स्टेज की बहुरंगी दुनिया का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनका सफर जितना लंबा है उतना ही प्रेरणादायक भी। रेल की पटरियों से शुरू हुई उनकी कहानी आज मंच, फिल्म और टीवी तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री अतुलेश कुमार जी का, एक ऐसे शख्स जिन्होंने रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और साथ ही रंगमंच पर अपनी एक्टिंग, लेखन और निर्देशन से सबका दिल जीत लिया। 30 से ज्यादा नाटकों में शानदार भूमिकाएं, 2 बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड और हाल ही में टीवी शो दूसरी माँ में अपनी उपस्थिति से सभी को प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं ऐसे कलाकार का जिन्होंने ड्यूटी और पैशन दोनों को बराबर सम्मान दिया। अतुलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
1: धन्यवाद आलोक जी, और सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ में जुड़ करके और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद समीर गोयल साहब का भी।
0: तो अतुलेश जी, शुरुआत करते हैं, तो अब आप आरंभ से बताइए, बचपन में ही एक्टिंग का शौक लग गया था क्या आपको?
1: ये पता नहीं क्या था, एक जुनून था या क्या था, लेकिन हाँ मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद था, लेकिन बंदिशें बहुत थी। कभी कभार हम लोग नाटक वगैरह देखने जाया करते थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने पहला पिक्चर जो देखा जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन उससे पहले मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। ये पता नहीं कहाँ का एक वो, पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, एक उत्सुकता थी, कोई कीड़ा था या क्या था, या बचपन में मैं मेरे फादर को देखा करता था कि भाई फादर के साथ में बैठ करके कुछ एक्टर एक्टिंग सीखा करते थे और कुछ हमारे यहाँ रिहर्सल वगैरह चलती थी, लेकिन जब मैंने होश संभाला तब तक हमारे फादर ने ये सब छोड़ दिया था। तो ये समझ लो कि बचपन से ही मेरी कुछ इसमें उत्सुकता रही, और बहुत बाद में जाके पता लगा कि हमारे फादर किसी जमाने में ड्रामा डायरेक्टर हुआ करते थे। यूँ किससे बहुत सुनाया करते थे वो, लेकिन मुझे नहीं लग, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो प्ले डायरेक्ट करते थे। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट फादर के टाइम के वो मिले, मिल करके मैंने उनको पैर वैर छुए तो उन्होंने कहा हाँ हम आया करते थे और अंकल जो है ड्रामा डायरेक्ट किया करते थे। ये बहुत बाद में आकर के मुझे पता लगा।
0: भाई अतुलेश जी, ये बात तो अद्भुत है, हमारे साथ भी आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है, ये बात शेयर नहीं हुई कि आपके फादर को भी डायरेक्शन का और एक्टिंग का शौक था। ये तो आज ही इस इंटरव्यू के दौरान मुझे पता लगा है, और नॉस्टैल्जिक भी है और अद्भुत भी है, और उसी से शायद आपने ये लिया है।
1: बिल्कुल, मजे की बात ये थी आलोक जी कि हमारे फादर को मैंने कभी पिक्चर देखते हुए नहीं देखा, और उनके ब्रदर वगैरह जो थे हमारे ताऊ या चाचा जो भी होते थे उनको रिक्वेस्ट करते थे कि चलो पिक्चर देख आते हैं, तो वो कभी पिक्चर देखने नहीं जाते। एक बड़ा मुश्किल से एक दबाव बना के उनको वक्त पिक्चर दिखाने लेकर के गए, फादर बीच में से ही उठे आए, बलराज साहनी की पिक्चर थी।
0: हाँ बहुत, चलिए बहुत अच्छा है। अब आप थोड़ा आपके रेलवे के सफर पे आते हैं, आपने रेलवे में एक बहुत ही लंबा और ऑनरेबल कैरियर बिताया, लेकिन साथ ही साथ आप ड्रामा और कल्चरल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे आप मैनेज करते थे?
1: ये थोड़ा बचपन से ही थोड़ा शौक था कि भाई मैं कहीं एक्टिंग करूं या क्या करूं, तो हमारे यहाँ एक स्टूडियो हम लोगों ने खोला हुआ था, फोटोग्राफी का एक शौक वो भी था हमारा, तो फोटोग्राफी करने जाया करते थे। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ मेरे फादर की वॉइस, तो फादर भी रेलवे में थे, तो फादर चूंकि बहुत एक्टिव थे तो लोग बागों को मुझसे भी उतनी ही ज्यादा उम्मीदें नहीं। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 1984 के अंदर, तो उस समय से ही लोग बाग मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम इस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, सब जगह मेरे पीछे पड़े रहते थे। और पता नहीं क्यों एक आत्मविश्वास उनके अंदर था कि ये आदमी कर जाएगा, इसको जो काम दो वो कर लेगा ये। और मैंने भी उसको ये समझते हुए लिया कि फादर की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे करना है। तो ये एक अद्भुत रहा,
0: मतलब फादर एक साये की तरह आपके साथ हमेशा रहे एक तरह से, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
0: आपको याद है आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब और कहाँ हुई, और कैसे उस वक्त आपने अनुभव कैसा रहा था, वो कैसा हुआ?
1: वो बहुत ही मजेदार रहा। वो एक्चुअली मैं पहला अगर सोचा जाए तो पहला स्टेज तो मैंने प्राइमरी स्कूल में, जब मैं मेरे ख्याल से नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, तब हमको एक सॉन्ग के लिए खड़ा किया गया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था तो उसमें एक सॉन्ग दिया था, तो उसमें वो कर गुजरे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में एक सनक सी थी जिसको मैं पहचानने में भूल कर रहा था, क्या कर रहा था। मैं जब फिफ्थ क्लास में पढ़ता था तो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर मैं पढ़ता था, आदर्श विद्या मंदिर बांदीपुर के अंदर। उस समय एक प्ले था, उसका नाम था हृदय परिवर्तन। ये था महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच का। शक्ति सिंह किन्हीं कारणों से अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि भाई मैं अपने भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ हूं, तो मेरा रोल था शक्ति सिंह का, मैं महाराणा प्रताप का पीछा कर रहा हूं। और वो पलट करके मुझे देखते हैं, आगे भागते हैं। लास्ट में मतलब ये कि स्टेज की परफॉर्मेंस थी तो इसलिए उनको स्टेज पर रुकना ही था। मैं उनके आगे गड़गड़ाया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। इतने में अकबर का कोई सिपाह साला जो होता है वो, उसने तीर चलाने की कोशिश करी और मैंने अपने तीर से उसको मार दिया। और उस समय आंसू तो खैर क्या आते थे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे आंसू आए। मैं महाराणा प्रताप के कदमों में पड़ा हुआ था, महाराणा प्रताप ने मुझे गले से लगाया, ये एक मुझे अभी भी वो याद है। ये पहला
0: वैसे आपने बहुत पुरानी याद दिला दी मुझे भी। ये शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का जो है, ये हम लोग के स्कूल की किताब में भी ये चैप्टर था, और हल्दीघाटी के युद्ध से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें भी बहुत पुरानी याद है। आप गजब की चीज याद दिला दी आपने, ये हिस्टोरिकल बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पुरानी हिस्टोरिकल बात पे ही एक अपन गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं।

0: आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर हेडक्वार्टर में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और ज्वाइंट कल्चर सेक्रेटरी भी रहे हैं। उस समय में रेलवे में कल्चरल एक्टिविटीज का माहौल कैसा था, थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं कुछ उसके बारे में, रेलवे के बारे में।
1: यो तो रेलवे की एक सशक्त टीमें रही हैं जगह जगह, लेकिन जयपुर डिवीजन इस मामले में कहीं थोड़ा सा पीछे था। हाँ, मुझे याद है कि 1982 के अंदर रेलवे की एक टीम ने या एक टीम लीडर ने यहाँ 82 में जब एशियाड 82 हुए थे, उस समय के लगभग 1000 लड़कियों को लेकर के घूमर वहां कराया था। तो वो चूंकि फादर के दोस्तों में हुआ करते थे, मैं उनके टच में था, तो वो टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट पे हुआ करते थे, तो वो डांस भी अच्छा करते थे, अच्छी वो करते थे, तो मैं उनके टच में था बराबर से। लेकिन हाँ, रेलवे का जो आप कह रहे हैं कि कल्चरल था, कल्चरल बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन जयपुर डिवीजन में काफी कम रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी फरमान कुछ ज्यादा दबाव में चलता था।
0: ओके, अच्छा। तो,
1: और जहां तक हम बात करें जयपुर डिवीजन की, मतलब ये डिवीजन बने हुए थे, वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन था जयपुर डिवीजन, यहाँ ब्रिटिश टाइम का इंस्टीट्यूट बना हुआ था जिसके अंदर किसी जमाने में बहुत अच्छे शो हुआ करते थे। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था बांदीकुई में, और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था फुलेरा के अंदर। तो बांदीकुई में जो इंस्टीट्यूट चलते थे, वहां इंस्टीट्यूट में हम लोग प्ले वगैरह देखा करते थे, और उसमें हमारे फादर कभी डायरेक्ट किया करते थे।
0: और ये एक छोटे मियां बड़े मियां ट्रेन रेस, ये नाम ही अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसा बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया जो बहुत पॉपुलर रहा, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो शेयर कीजिए।
1: उसके पीछे की कहानी ये है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2003 के अंदर इसका जन्म हुआ। तो अलग अलग जोन बनाए गए थे, नए जोन खोले गए थे, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से मिलकर के एक नया जोन बनाया गया था, और ये अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ था। तो नई एक कमेटी बनाई गई कि भाई इसका जो अपन पहली बरसी जो मनाया जाए, पहला एनुअल डे जो मनाया जाए, वो किस तरीके से मनाया जाए। तो एक बहुत ही क्रिएटिव डॉक्टर एन के कल्ला थे, उन्होंने उन्होंने पूछा होगा कि

0: चीज है कि भाई यहाँ कल्चरल का कोई संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। तो उसमें ये रहा कि मेरा नाम उभर करके आया सबसे पहले, कि अगर किसी आदमी को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो सबसे पहला शख्स अतुलेश होगा। तो चर्चाएं हुई, चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम एक अद्भुत तरीके का करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटी लाइन भी है और बड़ी लाइन भी है, गैस कन्वर्जन का काम चल रहा है, तो इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि हम एक छोटी लाइन के डिब्बों के अंदर जो सीटें होती हैं उन सीटों को हटा के साइड में लगाते हुए बड़ी लाइन के डिब्बे जो हैं उनके अंदर बड़े मतलब बीच में से सीटों को हटाते हुए साइड में लगा, और बीच में मतलब आठ आठ बोगियों के वो बनाए गए, और बीच में जो है कल्चरल प्रोग्राम चलते रहे। तो हमारे पास में जो जोन में डिस्ट्रिक्ट थे या डिवीजन थे वो थे जोधपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जयपुर डिवीजन। इसमें भी वर्कशॉप भी शामिल थे, जिसमें बीकानेर वर्कशॉप था, जोधपुर वर्कशॉप था, अजमेर वर्कशॉप था। तो इस तरीके से हमारे पास में टीमें पर्याप्त, दो दो टीमें हमने मंगाई सब जगह से। और हमारा सौभाग्य रहा कि उसके अंदर जो है जसदेव सिंह जैसी शख्सियत भी उसकी विटनेस रही, बहुत ही बढ़िया चला है। छोटी लाइन का और बड़ी लाइन का एक बराबर से रेस हुई, उस रेस में कभी छोटी लाइन आगे कभी बड़ी लाइन आगे, तो इस तरीके से चलता रहा।
1: बड़ा बड़ा
0: बहुत
1: इंटरेस्टिंग, बड़ा
0: बहुत
1: इंटरेस्टिंग
0: ही
1: और बड़ा
0: इंटरेस्टिंग था।
1: इनोवेटिव। अरे
0: हाँ, जिसको बीबीसी तक ने कवर किया न्यूज को।
1: वाह वाह
0: जी
1: वाह, ये तो जसदेव सिंह साहब की आपने याद दिला दी। क्या क्या
0: जी
1: हस्ती थे, वो भी जयपुर के ही थे भाई, वो जयपुर
0: हाँ
1: के थे,
0: जी
1: और क्या तो कमेंट्री करते थे क्रिकेट की और हॉकी की, तो खैर गजब के ही थे वो।
0: मेरे लिए इससे बड़े सम्मान का विषय कोई नहीं था कि मैं बिल्कुल साक्षात जसदेव जी के सामने खड़ा हुआ हूं और उनसे बात कर रहा हूं, जहां कभी मैं कमेंट्री कान लगा करके उस पर ट्रांजिस्टर पर सुना करता था कि जसदेव सिंह जी हॉकी की कमेंट्री कर रहे हैं, क्या मजा आता था सर।
1: अद्भुत अद्भुत, ये तो बहुत बढ़िया। चलिए, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के नाम पे, इसके नाम की शायद कोई एक फिल्म भी आई है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं उस।

0: अब तुलेश जी आते हैं आपकी थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में
1: जी।
0: आपकी पहली थिएटर एक्टिंग 1968 में और आखिरी 5 अगस्त 2025 में, मतलब लगभग 6 दशक का शानदार सफर। इतने सालों तक एक्टिंग का जुनून कैसे बरकरार रहा है आपका?
1: अब यो सोच लीजिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आपको अपना दैनिक कार्य भी करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं नौकरी भी करनी है, और आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं, तो समय में से समय ही चुराना पड़ता है साहब, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस छोटे छोटे क्षणों को चुराते हुए मैं अपना काम करता रहा। कुछ तो ये रहा कि लोगों का विश्वास मेरे साथ में रहा, कुछ मेरे पिताश्री का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, तो कुल मिलाकर के ये पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हो गया बराबर से।
0: आपने स्टेज पे भी एक्टिंग की है, कैमरे के सामने भी एक्टिंग की है, क्या दोनों में क्या फर्क महसूस होता है?
1: स्टेज की एक्टिंग आपके पसीने निकाल देती है और जो आप पर्दे पे जब आप करते हैं तो ये समझ लो कैमरा मैन के पसीने निकलवा देती है। मतलब वहां तो आपको रिटेक के चांस ही चांस है, वो बार बार कहेगा कि रिटेक रिटेक रिटेक, और जब आप स्टेज पे होते हैं तो स्टेज का जब आप शो कर रहे होते हैं और आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई तो सामने जो आपको डायलॉग कवर कर रहा है को आर्टिस्ट, उसके पसीना आ जाते हैं। बहुत मुश्किल है साहब स्टेज की आर्टिस्ट स्टेज पे आपको परफॉर्म करना, और उतना मतलब उतना तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, लेकिन वहां भी मजा हुआ, कलाकार ही चाहिए आपको, जहाँ आप बड़े पर्दे पे या टीवी पे एक्टिंग कर रहे हैं तो वहां भी मजा हुआ कलाकार चाहिए, लेकिन वहां क्या रिटेक के चांसेस होते हैं, यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ अगर आपको इम्प्रोवाइज करना आता है तो आप चल सकते हो, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है।
0: ये बहुत ही आपने गहरी बात कह दी और सही बात है, स्टेज की एक्टिंग और कैमरे के सामने की एक्टिंग में अपना डिफरेंस बहुत ही बखूबी बयान कर दिया। चलिए, आपने 30 से ज्यादा नाटकों में लीड और सपोर्टिंग रोल किए हैं, कोई ऐसा किरदार जो आज भी आपको याद है, आपके बहुत दिल के करीब है, ऐसा कोई किरदार है?
1: हाँ, किरदार तो है सर, मैं बताऊं आपको, एक बार मैं प्ले कर रहा था तो मुझे बोलना था विद्यावती, विद्यावती मेरी मिसेज का नाम था, और बोलना था ये क्योंकि विद्यावती मैं आज कमला की शादी तय कर रहा हूं, मेरे मुंह से ये निकल गया विद्या की माँ मैं आज रिश्ता तय कर आया हूं। फिर मैंने वहां कमला नहीं बोला, कमला की जगह अपनी बेटी का बोला, ये मैंने वहां संभाला, तो बड़ा हिला देने वाला बात हुई, और लेकिन वो बड़ा सक्सेस हुआ और उसमें हम लोगों का अवार्ड भी मिला, क्योंकि वो डायरेक्टर जानता था और मैं जानता था कि कहां मिस्टेक हुई
0: जी,
1: तो बस ये रहा। और एक हादसा ये हुआ कि मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा था तो उस डायरेक्शन के अंदर एक लड़का हमारे बहुत पीछे पड़ा कि देखो मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज कहां तक जाती है। मेरा कायदा ये रहा है कि जब मैं टीम के साथ करता हूं, एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूं, तो मुझे चाहिए होता है कि स्टेज पे से कम ऑडियंस की 5 पंक्ति तक आपकी आवाज बिना माइक के जाए, उसके मतलब उससे कम मैं सहमत नहीं होता। तो उस आर्टिस्ट ने मुझे काफी दूर तक आवाज सुना करके बताई, लेकिन वो जैसे ही स्टेज पे आया, स्टेज पे आने के बाद वो ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक होते के साथ ही अब वो मेरी तरफ देखे, क्योंकि मैं विंग में खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये तो खतरनाक काम हो गया। मैंने जबरदस्ती एक आर्टिस्ट को स्टेज पे धक्का दिया, वो बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ, उसने बात को संभाला। तो ये तो बात रही, लेकिन जहां तक मेरे किरदार का सवाल है तो मुझे सेठ जी के रोल बहुत अच्छे लगे, जहां जहां मैंने सेठ की किरदार निभाए, या कहीं कहीं मुझे ऐसे करेक्टर आर्टिस्ट में मान के चलो कि करेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते।
0: अच्छा, नहीं, सेठ का रोल आपके दिल के काफी गहरे। अम्मा वो बिल्कुल राजस्थानी पगड़ी वगड़ी लगा के सेठ के रोल जो
1: जी
0: होते हैं वो आपने काफी किए हैं लगता है।
1: जी
0: तो चलिए, इस किरदार की बात पे एक गाने के लिए हम एक साथ में लेते हैं अपने एक गाने को और एक गाना सुनते हैं।

0: अतुलेश जी, आप दो बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीत चुके हैं, डायरेक्शन का एक्सपीरियंस एक्टिंग से कितना अलग रहता है?
1: डायरेक्शन और एक्टिंग का ये समझ लो कि काफी डिफरेंस है। डायरेक्टर जो होता है उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है कि मतलब ओवरऑल सारे करेक्टर जितने भी काम कर रहे हैं वो उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये देखना पड़ता है। जिस हद तक आपको पब्लिक तक आपको अपनी बात पहुंचानी है उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उनके इमोशन वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि जो इमोशन आप पब्लिक में डालना चाहते हो या पब्लिक के चेहरे पे देखना चाहते हो। मतलब अगर कुछ ऐसा है कि भाई आंख में आंसू आने हैं तो पब्लिक बाकायदा रुमाल निकाल के आंसू पोंछते हुए दिखाई देनी चाहिए। अगर हंसी की बात है तो वो खुल करके हंसने वाली बात आ जानी चाहिए। और जहां तक एक्टिंग का सवाल है, वो एक्टिंग तो आप अपने ऊपर ही पूरा खर्चा करते हो, अपने ऊपर ही पूरा फोकस करते हो, आप कोशिश करते हो उस किरदार को पढ़ने की, उस किरदार की सराउंडिंग्स में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको देखने की, और उसको उतार करके, मतलब जैसे किसी किरदार को आपने जहन से लेकर के और आपके कलेजे तक उतारा और कलेजे से निकाल करके मुंह से निकाल के और आपके हाथ और आंखें और जो जो ऊपर मतलब शक से शिरा से लेकर के और नीचे मतलब कलवे के नाखून तक आपका जो पोस्चर आना चाहिए, जस्चर आना चाहिए, वो सब दिखाई देना चाहिए, वो उसकी बात है।
0: बहुत खूबसूरती से आपने बताया ये बात, ये डिफरेंस। तो एक प्ले तो आपने खुद भी लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्ट भी किया है, तो और शायद वो आकाशवाणी पे भी रिले हुआ था, कोई उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए कुछ।
1: हुआ यूं कि हमारे यहाँ रेलवे वीक मनाया जाता है, सब जानते हैं कि भाई अप्रैल के उसके अंदर रेलवे वीक मनाया जाता है।
0: अच्छा,
1: जब रेलवे पहली रेलवे शुरू हुई थी उसको लेकर के पूरी इंडियन रेलवे के अंदर एक रेलवे वीक मनाया जाता है, तो उसमें तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें अवार्ड फंक्शन भी होते हैं। तो मुझे कहा गया कि एक शॉर्ट प्ले आप लिखो और लिखने के बाद में वो करना है, तो मैंने एक शॉर्ट प्ले लिखा, बहुत हंसी मजाक का प्ले था वो। तो उसको इत्तेफाक से ये आपके हरिराम आचार्य जी के भाई थे घनश्याम आचार्य, जो आकाशवाणी के अंदर मेरे ख्याल से ड्रामा डिपार्टमेंट उनके पास में था, तो वो वहां देख रहे थे उसको, कवर कर रहे थे या क्या, मतलब वो बहुत आनंदित हो रहे थे। तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो बोले यार ये किसने लिखा यार, ये मिलाओ उससे मिलाओ। तो लोगों ने कहा ये इन्होंने लिखा है, तो इनसे बात कर लें आप। तो मेरी बात हुई घनश्याम आचार्य जी से, तो उन्होंने कहा मुझे मुझे एक प्रोग्राम चाहिए है युव वाणी के लिए। अब चूंकि टीम का लीडर मैं था, तो जो टीम के लीडर होने के नाते मैंने कहा कि यार ऐसा होना चाहिए कि भाई सब तरह के प्रोग्राम उसमें शामिल हो जाए, वैरायटी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें गाना भी हो, म्यूजिक भी हो, प्ले भी हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई

0: वाणी के लिए आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें वैरायटी प्रोग्राम चलेगा या खाली मेरा प्लेज आपको लेना है? बोले वैरायटी हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया माउथ ऑर्गन प्लेयर थे, उनको मैंने कांटेक्ट किया और फिर एक प्ले लिखा मैंने हाथ की हाथी, और लिखने के बाद में वो रखा मेरे पास में, और उन्होंने कहा मैं जल्दी संपर्क करूंगा आपके आपसे। तो उन्होंने हमको वो चांस भी नहीं दिया। एक हमारे गजल गायक भी थे तो वो उनका गजल का भी प्रोग्राम लिया मैंने, तो उन्होंने वो चांस भी नहीं दिया मुझे कि भाई मैं उसको एक दो रिहर्सल निकालूं। बोले आ जाओ फटाफट आ जाओ आकाशवाणी में अंदर स्टूडियो, उसके अंदर लगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और जाते के साथ ही उन्होंने बोले अंदर हो जाओ और इसको पढ़ो अपने प्ले को पढ़ो। तो मैं अपने साथ तीन चार लोगों को ले गया जिसमें एक फीमेल आर्टिस्ट भी थी। तीन चार लोगों को ले जाने के बाद में वहां जब हमने शुरू किया तो उन्होंने कहा बीच में अरे आप थोड़ा सा निकल के इधर आओ हारमोनियम पे दो बीट दे दो फटाफट। वो बीट दी और जब शाम को मैंने सुना तो मैं तो चकरा गया बुरी तरह से। मैंने कहा ये मेरी आवाज है, और वो जो हारमोनियम हमने प्ले किया था वो इतना फिट बैठ रहा था, मजा आ गया उसके अंदर। तो वो प्ले मेरा लिखा हुआ था, उसमें हमने एक्ट भी किया अपने हमारी टीम के साथ में। एक मजेदार रहा
1: बहुत अद्भुत
0: एक्सपीरियंस।
1: विवरण बताया आपने आकाशवाणी का, और घनश्याम आचार्य जी की जो बात आपने कह दी ना, कोइंसिडेंटली कह लीजिए या कैसे, घनश्याम आचार्य जी से मेरा भी किसी जमाने में बड़ा परिचय था। इन्होंने मुझे भी आकाशवाणी में एक बार कुछ पढ़ने के लिए बुलाया था, तो मेरी भी दोस्ती इनसे काफी थी। चलिए बहुत पुरानी बात याद आ गई। तो घनश्याम आचार्य जी की याद में एक गाना सुन लेते हैं, मेरे को बड़े पसंद थे घनश्याम आचार्य जी, एक गाने के लिए रुक जा।

0: अतुल जी, अब आते
1: जी
0: हैं आपके फिल्म, टीवी और वेब सीरीज के सफर पर। आप
1: जी
0: 7 बॉलीवुड फिल्में, 6 टीवी
1: जी
0: सीरियल्स और 4 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। इनमें से
1: जी
0: कौन सा मीडियम आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: बड़ा पर्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं ना, टीवी सीरियल्स वगैरह जो वो आपके घरों तक पहुंचते हैं, वहां से आपको फीडबैक मिलता है। अब बड़े सिनेमा को तो हालांकि आजकल तो सभी प्लेटफॉर्म पे आने लगे, OTT प्लेटफॉर्म चल गए, सब पे आने लगे,
0: जी,
1: लेकिन तीनों जगह वो मौज मस्ती है और वो बढ़िया आलम रहता है। बड़ा बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट रहता है इनका। मुझे तो तीनों जगह पसंद करने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मेरा लगाव रहा थिएटर से। जो आप ये समझ लो कि ये मूल है उसका। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन लोगों ने फिल्में की हैं, वेब सीरीज की हैं, उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। अब वो हो सकता है कि उनके अंदर कहीं से कोई निखार हो या क्या हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि थिएटर करना जरूरी है।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, उम्दा एक्टर्स हैं, नसरुद्दीन शाह कह लीजिए या कोई, ये सब स्टेज से ही निकले हैं और अब अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
1: जी
0: हाल ही में आपने एक NTV के लिए शो किया है, दूसरी माँ। इस
1: जी
0: अनुभव के बारे में बताइए, ये कैसा है?
1: ये बड़ा बढ़िया अनुभव रहा साहब। हालांकि कहानियां आपके इर्द गिर्द ही होती हैं, वो कहानियां कुछ लोगों की नजर में आ जाती हैं, वो राइटर उनको लिखते हैं और किसी हकीकत तक पहुंचते हैं। वहाँ एक अच्छा माहौल आपको मिलता है, मतलब बिल्कुल ऐसा नेचुरल माहौल मिलता है जिसमें आपको कुछ करने को मिलता है कि हाँ भाई ठीक है। मुझे वैद्य जी का रोल मिला था, पहले पहले रोल मिला था मेरे को जज का इसके अंदर, लेकिन उसके बाद मुझे रोल मिला इसमें वैद्य जी का। और वैद्य जी भी एक इस टाइप के, वैद्य जी के पैसे के लिए कुछ भी करना है।
0: अच्छा,
1: तो उसमें यह है कि एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में, जैसे रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं, और वो गांठें अपने उसकी वजह से पड़ती हैं कि अपनी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती, या कोई ये चाहता है कि मेरी मेरी बड़ाई होती रहे परिवार के अंदर, बाकी के लोग ऐसे ही चलते रहें, और जहां कहीं दूसरे की बड़ाई की बात आती है, या कहीं किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, या कहीं कोई के मतलब ये समझ लो कि किसी की इनकम में फर्क आने लगता है, किसी की रेपुटेशन में फर्क आ, तो एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के बीच में ये रहा कि एक साजिश सी चल रही थी। आजकल तो हर एक सीरियल के अंदर आपको साजिश मिलेगी, है ना। तो वहां वहां क्या थी, एक मतलब परिवार की एक सदस्या दूसरी सदस्या को इस बात पे मजबूर कर रही थी कि माँ ना बने, तो वो मेरे पास आती कि मेरे को वैद्य जी कोई ऐसी दवा दे दो, बहुत परेशानी में हूँ, और ये कर दो वो कर दो। बाद में खुलासा होता है कि अरे मैं तो किसी साजिश का शिकार हो गया, मैंने उसको भी दवा दे दी और ये क्या किया मैंने। तो ये कुछ बड़ा मजेदार रहा कुछ।
0: अरे वाह, अच्छा, मुझे समझा कि दूसरी बार से मुझे ये लगा था कोई सौतेली मावा का किस्सा होगा।
1: हाँ कुछ
0: नहीं,
1: कुछ
0: वैसे
1: ऐसा ही है, किसी ने
0: ऐसा
1: एडॉप्ट किया किसी को, लेकिन वो उसको भाया नहीं, दूसरी दूसरी लेडी को ये नहीं भाया कि इसने इसको एडॉप्ट कैसे कर लिया। तो कुल मिलाकर के जब एडॉप्ट कर लिया तो बोले अब इसने एडॉप्ट कर लिया, अब इसके बच्चा नहीं होना चाहिए।
0: तो अतुल जी, कोई ऐसा रोल या करेक्टर जिसे करने की अब भी आपको ख्वाहिश है और यार ऐसा मेरे को कोई रोल मिल जाए तो मैं जरूर करूंगा, कोई है ऐसा?
1: बिल्कुल, अभी जो है ना मुझे करेक्टर एक्टर में कुछ मतलब ऐसा जो एकदम परिवार का मुखिया है, और मुखिया होने के बावजूद भी पूरे कमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार में बिखराव रहता है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है, ऐसा कुछ करेक्टर मुझे करना है। ये ऐसी तमन्ना है कि भाई वो बराबर परिवार से जूझ रहा है, कभी कहीं संकट खड़ा हो जाता है, कभी कोई संकट खड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर के बात ये कि एक ऐसे करेक्टर की तलाश है उन्हें।
0: नहीं, ये तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन चलिए आपके इस करेक्टर की तलाश के लिए हम एक गाना सुनते हैं इस स्टेज पर।

0: अतुलेश जी, आपने एक्टिंग के
1: जी
0: साथ कई नाटक लिखे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज भी किया है। इतनी
1: जी
0: क्रिएटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन आती कहाँ से है भाई, ये तो बताइए हमें।
1: बस यूँ समझ लो कि मैं करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। और मैंने एक कोशिश ये की है कि ना थकने की कोई, वो ऐसा होना चाहिए कि जहन में थकावट नहीं होनी चाहिए। ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, तो ये कोशिश रहती है कि। और दूसरा पीछे ये भी है कि मैं अपने पिताश्री का कुछ, अगर 0.05% भी कुछ करता हूँ तो अपने आप को सफल मानूंगा। क्योंकि मेरे पिता के विषय में जब मैं सुनता हूँ, उनके दोस्तों से सुना करता था कि हमारे पिता अपनी बगल में 8 संस्थाओं को दाब के चला करते थे और सबको समय दिया करते थे बावजूद अपनी नौकरी के। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि कम से कम उतना एनर्जेटिक तो रहूं। और मैं ये सोचता हूं कि कभी थक कर बैठ गया तो अपने घर लौट जाऊंगा, तो मैं थकने की कोशिश नहीं करता।
0: वाह, क्या बात कही है। एक तरह से आपकी जितनी एक्टिविटीज है, जितनी एनर्जी है, अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट है। आप, वो आपके साथ रहते हैं और वो एनर्जी आपको मिलती रहती है और आप उससे काम करते रहे। क्या बात कही है आपने। पिता के लिए इससे बड़ी ट्रिब्यूट क्या हो सकती है। कोई बेटा ये कहे कि मुझे सब कुछ उनसे मिल रहा है, एनर्जी भी उनसे मिलती है, क्या बात है।
1: जी
0: स्कूल टाइम में आप बास्केटबॉल कैप्टन भी रहे हैं, क्या उस टीम वर्क का असर आपके थिएटर ग्रुप या स्टेज लाइफ पर भी पड़ा है?
1: बिल्कुल साहब, टीम वर्क तो आपका सब जगह काम आता है। मतलब एकाकीपन जो है ना, अकेला में एकला चलो वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। एकला चलो में तो मेरे ख्याल से मजा नहीं है। जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो सफलता जो सबको मिलकर के जो प्रसन्नता रहती है ना, उसका मुकाबला नहीं है सब।
0: सही कह रहे हैं, चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे इवन बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इतने बड़े टीम वर्क ही इनको सबको बनाता है। यही एसेंस है इस सारे काम का। क्रिएटिव कोई भी काम होगा, अकेले बहुत कम चीजें होती हैं। पेंटिंग भले ही आप अकेले कर लो, लेकिन ये जो मीडिया है, ये सारा टीम वर्क का है। बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया।
1: बिल्कुल सर, हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा था उनका। हमारे मित्र हैं पंडित हरिहर शरण भट्ट, सितार वादक जो हैं। उनके मुंह से एक वाक्य सुना मैंने जब से, वो मेरे 2003 के 2001 के अंदर मेरे टच में आए थे, मैं उनके संपर्क में आया, तो उनके मुंह से एक बात हमेशा सुनता हूँ कि अतुल जी भाई साहब, मैंने पैसा तो अपनी जगह कमाया है सो कमाया, लेकिन मैंने आदमी कमाए। अपने व्यवहार से किसी आदमी का आप दिल जीत लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये मैंने उनसे सीखा था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। भट्ट जी का नाम बहुत मशहूर है और बहुत आला दर्जे के कलाकार है।
1: जी
0: आपने प्रशासनिक क्षेत्र और कला दोनों में बेहतरीन काम किया है। आपकी नजर में आपको सक्सेस या सफलता की क्या परिभाषा है, क्या क्या कहेंगे आप इसको करें?
1: सफलता की परिभाषा ये है कि जो काम मिले प्रसन्नचित्त होकर के उस काम में जुट जाओ। अगर आपसे वो काम नहीं होता है, शुरुआती दौर में ही आपको लगने लगता है कि ये काम आपके उसमें नहीं है, तो आप उसको सीधे सीधे मना कर दो कि भाई ये काम मेरे बूते का नहीं है। अगर आपने काम हाथ में लिया है तो उसको प्रसन्नता पूर्वक निपटा दो आप। और जहां आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है, टीम का सहयोग जरूर लेना चाहिए।
0: अभी अगर यंग लोगों को कोई आप एक मैसेज देना चाहें, जो अपने जॉब के साथ पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? एक छोटे से मैं कुछ बताइए हमें।
1: जब भी काम करें तो कभी तैश में या डिप्रेशन में ना आए, काम करें, उसको काम को एंजॉय करें।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर बात कही आपने, छोटी सी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात। अब हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अतुलेश जी, आज आपके साथ बातचीत करना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। आपका जीवन ये सिखाता है कि अगर जुनून सच्चा हो, तो कोई उम्र, कोई काम, कोई सीमा आपको अपने सपनों से नहीं रोक सकती। रेलवे की ड्यूटी से लेकर मंच और कैमरे की चमक तक आपका सफर मेहनत, लगन और कला से भरा हुआ है। आप जैसे कलाकार आज भी नई पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पैशन कभी रिटायर नहीं होता। अतुलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आज मुझे, आपने मेरे से संपर्क किया, बातें साझा हुई और एकदम रिफ्रेश हो गया। ये यकीनन ये मानिए है कि मैं वाकई में अपने आप को और ज्यादा यंग महसूस करने लगा हूँ आपके साथ बात कर।
0: वाह, क्या बात है। और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए इंसान के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हर आवाज के पीछे होती है एक कहानी।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी माँ तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे मेहमान जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है राहुल कुंभकार। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मौका दिया और मैं आपके FM पर आया हूँ, बहुत शुक्रिया इसके लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, आप कैसे शायर बने, अपना थोड़ा सा परिचय दें।
1: जी जी समीर भैया, मैं राहुल कुंभकार मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से ताल्लुक रखता हूँ और शिक्षा में मैंने MA हिंदी एवं BEd किया हुआ है। एक निजी विद्यालय में मैं अभी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। उसी के साथ मैं गीतों गजलों की दुनिया में आया हूँ एवं कुछ शेर लोगों तक पहुंचे भी हैं। तो मेरा जो ये सफर शुरू हुआ था, मैं लगभग जब विद्यालय समय से ही मैं लिखता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने गजलों का जो नियम कायदा है वो थोड़ा बाद में सीखा, लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि और अच्छा अच्छे से अच्छा कर सकूं।
0: बहुत खूब राहुल भाई, बहुत खूब। तो राहुल भाई मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमको और हमारे सुनने वालों को सुनाएं प्लीज।
1: जी शुक्रिया भैया, मैं एक दो शेर पेश करता हूँ कि चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए, चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए, घने जंगल से बाहर जाने का रास्ता निकल आए।
0: वाह क्या बात है
1: भैया, 1 मिनट इसको काट देना, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूँ।
0: ओके।
1: चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए।
0: जी।
1: चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए, घने जंगल से जाने का कोई रास्ता निकल आए।
0: जी।
1: शेर यूं है कि मुझे पहचानने से कर रहे हो आज तो इनकार, मुझे पहचानने से कर रहे हो आज तो इनकार, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिश्ता निकल आए।
0: क्या बात है क्या बात है,
1: कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिश्ता निकल आए। बहुत शुक्रिया। नहीं चलता है मेरा घर सुखन के कारखाने से, नहीं चलता है मेरा घर सुखन के कारखाने से, गजल इतना तो दे कि कुछ मेरा खर्चा निकल आए।
0: क्या बात है बहुत खूब।
1: गजल इतना तो दे कि कुछ मेरा खर्चा निकल आए, मैं घर अपना जब बनाऊंगा खुदा इतना करम कर दे, मैं घर अपना बनाऊंगा खुदा इतना करम कर दे, किताबों के लिए इसमें कोई कमरा निकल आए।
0: बहुत खूब।
1: किताबों के लिए इसमें कोई कमरा निकल आए। बहुत शुक्रिया, ये गजल मैंने अभी ताजा कही है भैया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आपने खासम खास जो एक किताबों के लिए एक कमरे की दरख्वास्त की है खुदा से, उसमें तो मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे हमेशा मेरे घर में एक बहुत बढ़िया सी, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, लाइब्रेरी जरूर चाहिए साहब। चाहे मैं उसे अपने ड्राइंग रूम में रखूं, चाहे बेडरूम में रखूं, लेकिन लाइब्रेरी तो चाहिए साहब।
1: जी जी भैया, मैंने ये चीज महसूस की है कि जो ये सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी है वो पुस्तकों से दूर होती जा रही है। हम लोग तो पाठक हैं, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई लोगों ने पुस्तकों को जितना महत्व देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। एक शेर मैंने कहा था, मैं सुनाता हूँ। हकीकत की तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा,
0: जी
1: हकीकत की तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा, मेरी बातें बताओ

0: वो बोल कर अब कौन देखेगा, और शेर यूं है कि छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में,
1: ओहो
0: छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में, वो कहती है कि गीता खोल कर अब कौन देखेगा।
1: ओहो, क्या बात
0: वो
1: है।
0: कहती है कि गीता खोल कर अब कौन देखेगा।
1: तो इस वजह से वो 10 का नोट हमेशा वहां सुरक्षित रहेगा।
0: जी
1: क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि किताबों पढ़ने की तो आदतें छूट गई हैं,
0: आदतें छूट गई
1: तो
0: हैं।
1: 10 रुपए का नोट जो है वो वहां पर सुरक्षित रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: जी
1: तो राहुल भाई, मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
0: जी भैया, मैं मुझे हस्तीमल हस्ती साहब की एक गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जो जगजीत सिंह ने गाई थी, वो मुझे बहुत पसंद है, वो आप सुनवा दीजिए।
1: बहुत खूब, आइए दोस्तों सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की आवाज में गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी गजल के लिए।
1: अगली शुक्रिया।
0: अगली कौन सी गजल आपने पसंदीदा गजल गायकों में से किसी एक की सुनवाना चाहेंगे आप?
1: मैं एक गजल जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है वो हमारे नूर साहब ने लिखी है,
0: जी।
1: जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जगजीत सिंह ने ही गाया है उसको।
0: जी,
1: जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब
1: जी।
0: आइए दोस्तों, जगजीत सिंह साहब की ही आवाज में ये प्यारी सी गजल सुनते हैं।

0: राहुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में। और एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा,
1: जी।
0: अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं उनको आपका परिचय कैसे दूं?
1: भैया देखिए, मेरा परिचय, मेरा जो शेर था, मैं एक शेर से परिचय देना चाहता हूँ।
0: इरशाद, इरशाद।
1: पिता से पूछिए वो घर को घर कैसे बनाते थे। पिता से पूछिए वो घर को घर कैसे बनाते थे। तपाते थे बदन तब जाके कुछ रुपये बनाते थे। और शेर यूं है कि मुझे पहचान दुनिया में मेरे फन ने अता की है। मुझे पहचान दुनिया में मेरे फन ने अता की है, वगरना बाप दादा गांव में मटके बनाते थे।
0: क्या बात है।
1: जी
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही सीधी सादी सच्ची बात अपने परिचय के तौर पर आपने फरमाई। बहुत ही सीधा सा, मतलब यूं कहें तो मैं अपनी तरफ से इसमें ये जोड़ सकता हूं, जिसको मैं किसी को बताऊंगा कि राहुल साहब बेहद सीधे सादे इंसान हैं, जिनको शायद छल कपट छू के नहीं गया। बाकी आप इनका ये शेर सुन लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने सीधे व्यक्ति हैं। बहुत खूब राहुल भाई, बहुत खूब। तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक गजल और सुनाएं हमारे सुनने वालों को।
1: जी देखिए, मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। मैं जब महानगरों में जाता हूँ तो बदलता हुआ परिवेश देखता हूँ, तो उससे बड़ा प्रभावित होता हूँ। एक मतलब एक शेर मैंने कहा था कि दिलों के खून हुआ करते थे पहले।
0: जी
1: दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले।
0: जी
1: दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले। और शेर देखिए भैया, आपको पसंद आएगा।
0: इरशाद,
1: खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन।
0: जी
1: खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन, यहाँ गेहूं हुआ करते थे पहले।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया।

0: बहुत बढ़िया, राहुल भाई आगे बढ़ते हैं
1: जी।
0: आपसे गुजारिश है कि हमारे सुनने वालों को एक गजल और सुनाए प्लीज।
1: जी मैं कोशिश करता हूं। एक मतलब एक दो शेर यूं है कि अंतर मन में घोर उदासी
0: जी,
1: अंतर मन में घोर उदासी कल भी थी और आज भी है
0: जी,
1: अंतर मन में घोर उदासी कल भी थी और आज भी है, सारी दुनिया खून की प्यासी कल भी थी और आज भी है,
0: आज भी है। वाह,
1: शेर यूं है कि बच्चों ने मंचूरियन बर्गर पिज्जा डोसा बांट लिया,
0: ओहो
1: बच्चों ने

0: मंचूरियन, बर्गर, पिज्जा, डोसा बांट लिया। माँ की प्लेट में रोटी बासी, कल भी थी और आज भी है। कल
1: वाह वाह, क्या बात है
0: भी थी और आज भी है। और एक शेर यूं कहा था कि
1: इरशाद
0: हमने हमने आयातित पौधों को पानी
1: जी
0: वानी खूब दिया।
1: जी
0: हमने हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया, लेकिन घर की तुलसी प्यासी कल भी थी और आज भी है।
1: ओहो, क्या बात है।
0: हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया, लेकिन घर की तुलसी प्यासी कल भी थी और आज भी है। और एक शेर यूं है कि जिनका दर्द हमारे दिल में आज भी है और कल भी था। जिनका दर्द हमारे दिल में आज भी है और कल भी था। दिल में उनके फांस जरा सी कल भी थी और आज भी है।
1: ओहो, आज भी है जी।
0: आखिरी शेर की, झूठे चोर उचक्के पागल लंपट मायावी गुंडे। झूठे चोर उचक्के पागल लंपट मायावी गुंडे, इनकी संख्या अच्छी खासी कल भी थी
1: और
0: और
1: आज
0: आज
1: भी है,
0: भी
1: बहुत बढ़िया,
0: है।
1: बहुत
0: जी
1: बेहतरीन। भाई वाह, क्या कह
0: जी
1: दिया, क्या कह दिया, शानदार
0: जी
1: शानदार। राहुल भाई, थैंक यू सो मच। तो अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
0: जी शुक्रिया भैया। मैं एक गजल परवीन शाकिर साहिबा ने लिखी थी, जो उस्मान मीर साहब ने गाई है
1: जी
0: और भी कई सारे गजल गायकों ने गाई है। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पर एहसान हवा करती है।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है।
0: जी
1: पहले के ही कुछ अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं इस गजल के। आइए दोस्तों,
0: जी
1: सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

0: मैं कोशिश करता हूं। एक मतलब एक दो शेर यूं है कि
1: इरशाद
0: रफ्ता रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे,
1: जी।
0: रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे, हो रहे हैं ऐब सब जाहिर मेरे,
1: ओहो
0: रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे, हो रहे हैं ऐब सब जाहिर मेरे। शेर यूं है, मेरे दुख ने एक दिन मुझसे कहा,
1: जी
0: मेरे दुख ने एक दिन मुझसे कहा, मेरा दुख भी लिख कभी शायर मेरे,
1: क्या बात है।
0: मेरा दुख भी लिख कभी शायर मेरे। कहते हैं इमरोज मेरी अमृता,
1: जी
0: कहते हैं इमरोज मेरी अमृता, अमृता कहती है कि साहिर मेरे,
1: ओहो
0: अमृता कहती है कि साहिर मेरे। शेर यूं है कि कब तलक आखिर रहेगा कैद में, कब तलक आखिर रहेगा कैद में, तोड़ पिंजरा और उड़ ताईर मेरे,
1: जी
0: तोड़ पिंजरा और उड़ ताईर मेरे। आखिरी शेर, दुश्मनी का क्यों करूं अफसोस मैं,
1: जी
0: दुश्मनी का क्यों करूं अफसोस मैं, दोस्त सारे हो गए शातिर मेरे।
1: ओहो क्या बात है,
0: जी
1: बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, दोस्त हो गए सभी शातिर मेरे।
0: जी
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। राहुल भाई बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें हमने सुनी, आपके पसंदीदा गायकों की गजलें हमें सुनी, हमने आपसे बातचीत करी।
0: जी जी भैया,
1: हमारे सुनने वालों को भी आपसे बातचीत करके, आपकी बातें सुनकर, आपकी गजलें सुनकर बहुत मजा आया होगा।
0: बहुत अच्छा लगा भैया मुझे आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुंचने के लिए, आपके ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नई नई प्रतिभाओं को श्रोताओं से मिलवा रहे हैं। रूप का आभार आपका।
1: बहुत शुक्रिया।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आप का मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
3: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार हैं, जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
4: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहां पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की RKVY रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सकें। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे FPOs को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
5: हमारे स्टार्टअप का नाम रावटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
3: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
4: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
3: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
3: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
6: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
7: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
3: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें आइए जानते हैं।
7: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अब जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो है वो खिला दें।
3: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
8: पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
3: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
9: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा। उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाउ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
3: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
9: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में एक थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे का एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
3: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
9: मैंने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा, इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20-22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12-15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
3: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
10: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है, ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
2: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है, फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
1: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
2: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृतिक कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
1: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
3: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष सांग में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
4: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
1: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं, अगर इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
0: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
1: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गया, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
0: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
0: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों, प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
0: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी जीआई टैग पा चुकी उपज भी

0: शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है, और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं, जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं, यानी वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशुओं का किस तरीके से देखरेख हमें करना चाहिए, इस विषय पर साथ में हम बातचीत करेंगे। वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम

की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उर्वरक कल्चर फपूद नाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं से तैयार बीज की सफाई कर लें व अंकुरण की प्रतिशत अवश्य जांच लें। अंकुरण का प्रतिशत यदि 70% आता है तो ठीक है, आपका बीज अच्छा है, बोने लायक है। यदि 70% से कम आता है तो नए बीज की व्यवस्था भी साथ में कर लें। जो मक्का की फसल है उसके लिए जो परामर्श दिया गया है, बताया गया है, वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त किस्म जो है वो JVM 421 है, HPQM 1 है, JM 216 या फिर उत्तम अवधि की संकर किस्म की व्यवस्था कर लें बीजों की। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की खेती हेतु उपयुक्त किस्म जो है JS 2069, JS 2098, RS 24, JS 2029, RVS 2001-4 आदि की व्यवस्था कर लें। उड़द के लिए उड़द की उत्तम किस्म है उत्तरा, JU 86, PU 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था अवश्य कर लें। कपास की उन्नत किस्म है DCH 32, BT 2, कपास की किस्मों की व्यवस्था कर लें। साथ साथ में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं उनमें खासतौर पर अगर नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनके रोकथाम के लिए प्रोफेनोवस दवा जो रहती है 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अदरक और हल्दी की खेती हेतु प्रकंड की बुवाई करें। साथ में बुवाई के पूर्व प्रकंड को डाइएन M45 और काइब्रोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबो कर रखें। बरसात की सब्जियों की रोपणी में जल निकास की उचित व्यवस्था भी कर लें। तो ये थे हमारे मौसम आधारित जानकारी जो हम आपको उपलब्ध करा रहे थे। साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं अमरूद की बागवानी करने से पहले हम किस तरीके से सावधानी, किस तरीके से हमें अमरूद की बागवानी लगानी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: एक ऐसा फल जो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आता है। जी हाँ, साथ ही अगर हमारे किसान उसका प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद की बिकवाली करें तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कौन सा है ऐसा फल, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी और पेक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। पौधे की बढ़वार अच्छी हो और जड़े आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसके लिए खेत की दो बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं पौधे रुपाई के बारे में। तो अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शरद ऋतु में पौधे की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर और गर्मियों के मौसम में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ ही अमरूद के खेतों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहे। बारिश के मौसम में इस बात का खास ध्यान रखें कि बाग में अनावश्यक पौधे ना उग पाए। इसके अलावा अमरूद में कीड़े की समस्या बारिश के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों के उबले पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अमरूद में उखटा रोग, तना कैंसर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि को बनाए रखने के लिए टहनियों की हल्की छटाई करनी जरूरी होती है। इसकी कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियों से ज्यादा फल उत्पादन की संभावनाएं रहती है। अब बात कर लेते हैं फलों की तुड़ाई की। पौधा रोपण के 2 से 3 साल बाद अमरूद के फल लगने शुरू हो जाते हैं। तैयार फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए। यदि फल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है तो किसान उसे प्रसंस्कृत करके भी अच्छी आय ले सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अगर एक ही खेत से हमें दोहरा लाभ मिले तो कितना अच्छा होगा। ये संभव हो सकता है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसी में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके मुनाफे को दोगुना कर सकता है। कैसे, आइए जानें हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन के जरिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है, जो धान की फसल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धान की फसल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी से भरे धान के खेत में किसान एक और लाभ ले सकते हैं और वो है मछली पालन। जी हाँ, पानी से भरे इन खेतों में किसान आसानी से मछली पालन कर सकते हैं। इस दोहरे लाभ में धान की पैदावार भी अच्छी होगी और किसान को दोहरा लाभ हो सकेगा। हालांकि धान की खेती और मछली पालन का ये कॉम्बिनेशन नया नहीं है। फिश राइस फार्मिंग चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देशों में काफी लोकप्रिय है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता हमारे किसानों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। इस तकनीक में धान की फसल में जमा पानी में मछली पालन किया जाता है। अगर किसान चाहते हैं तो धान से पहले ही मछली का कल्चर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मछली कल्चर खरीद भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस तरीके से मछलियों का उत्पादन खेती, प्रजाति और उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। खेती की इस तकनीक में एक ही खेत में मछली व दूसरे जल जीवों को एक साथ रखा जाता है। इससे धान के उत्पादन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, बल्कि खेत में पल रही मछलियों को भरपूर चारा मिलता रहता है। तो मछलियों को वेस्ट फसल के लिए जैविक खाद का काम करती है। इसके अलावा मछली पालन से धान के पौधों में लगने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। फिश राइस फार्मिंग करने के लिए निचली जमीन वाले खेत का चुनाव करें। इस तरह के खेत में काफी आसानी से पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही खेत को तैयार करते समय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से मछलियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। फिश राइस फार्मिंग तकनीक में शुरुआत में किसान रोहू, मृगला, मुगली, कतला प्रजातियों की मछलियों का चयन कर सकते हैं। ये मछलियां उथले पानी में आसानी से रह लेती है। साथ ही बेहतर लाभ लेने के लिए धान की लंबे समय में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें, जैसे वानी धान CR26077, ADT6, ADT7। इससे मछलियों को 4 से 5 माह का समय मिल जाता है। ये मछलियां 3 माह में ही करीब 500 से 700 ग्राम की हो जाती है। किसान एक एकड़ के खेत में 400 किलो मछली का बीज या करीब 2000 मछलियां छोड़ सकते हैं। किसान इस बात का ध्यान रखे कि रुपाई के करीब 7 दिन बाद ही मछलियां छोड़े। साथ ही खेत में पानी का स्तर बनाए रखे। धान के खेत में करीब 6 इंच या इससे ज्यादा पानी रखे। पानी का स्तर 9 इंच भी रख सकते हैं। इस तकनीक से मिलने वाले लाभ: मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है, प्रति यूनिट एरिया पर कमाई अच्छी होती है, उत्पादन में खर्च कम होता है, फार्म इनपुट की कम जरूरत पड़ती है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उर्वरक पर कम खर्च होता है। इस तरह किसान उतनी ही भूमि में कम संसाधन में एक ही समय में 2 गुना लाभ कमा सकते हैं।
1: तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें।
3: HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उनके ये प्रयास और उनसे मिली सफलता बाकी किसानों को भी नया करने की प्रेरणा दे रही है। लहलहाते खेतों के बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और अलग खेती करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। वो बताते हैं कि पहले उनके परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बचपन से खेतों में समय गुजारने के कारण परमजीत को खेती से लगाव होने लगा। लेकिन वो खेती में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सके। इसके लिए परमजीत ने बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे।
4: क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था, बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के। तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में, उसके साथ साथ खेती भी करते थे लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी, तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पे जाके जल्दी आ सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे थे वो भी नहीं था किस्मत में। तो खेती करते करते जो नया रेगुलेशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे, उसमें सब्जी भी लगाई है। पहले बहुत गोभी वगैरह आलू की हम खेती करते थे, तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने काम उससे किया है तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है, हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है।
3: समय बीतता गया, नफा नुकसान लगा रहा, लेकिन उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे जो मुनाफा मिला उसने परमजीत के लिए सफलता के नए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से।
4: और ये हमारी एक हिमाचल में मूंगफली बहन है जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है, जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने दो जो एक एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था, तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले पहले तो लगाई हमने, स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियां लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है, उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है। क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी, स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे।
3: स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके, इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं।
4: हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे, उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी और कम भी रहती थी। तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है, तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया, अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहां से मंगवाते हैं। पुणे की एजेंसियां हैं 2-3, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, और हैं 2-3, वो बाहर से मंगवाते हैं मदर प्लांट, तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है, उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती हैं, 10-20 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज्यादा कम है। जो कैमरोज है या ऐसे है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन एक से लेके पाँच छह दिन तक रहती है।
3: परमजीत जी आज जिस मुकाम पर हैं, वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया, वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम ये है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है।
4: जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें HDO है युवराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है, उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो, आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी, कि वो आगे जो चार पांच और मेरे गांव के लड़के हैं वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है।
5: पाँच साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने एक एकड़ से हाफ एकड़ से स्टार्ट किया था काम, उसे बहुत सी प्रॉब्लम आई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई, ये इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है, लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, तो इन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का इस स्ट्रॉबेरी का है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको तो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम, और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं।
3: आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हो भी क्यों ना, इसी खेती ने आज उनके कई सपने साकार कर दिए हैं।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आप सुन रहे थे इस रेडियो रिपोर्ट को और जाना कि किस तरीके से हम अमरूद की बागवानी किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में पशुपालन किस तरीके से कर सकते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, धान की बुवाई हम कैसे कर सकते हैं, सफल किसान की कहानी को भी जाना कि किस तरीके से हमारे पंजाब के किसान ने स्ट्रॉबेरी करके अपने आय वृद्धि की है। तो ऐसी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही खेती में फसलें उगाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखना होगा कि हमारे मिट्टी में कौन तत्व, किस तत्वों की कमी है, उस तत्वों को हम पूर कर हम किसी भी फसल को हम लगा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यानी विराम लेते हैं, इसके बाद हम छत पर बागवानी करने के तरीके किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ की सलाह हम जान लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आज मेरा नर्सरी में आने का जो मकसद है वो बहुत सिंपल है कि हमने अगर टेरेस में या बैल्कनी में अपने गार्डन बनाना है तो हमको किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर नर्सरी में आने से पहले आपको अपने घर का पूरा म्योना करना पड़ेगा। समझो मैं टेरेस में खड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरा टेरेस कौन सी डायरेक्शन का है, साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, या खुले टेरेस में मेरे को चारों डायरेक्शंस मिलती हैं। डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने किस किस्म का पौधा लगाना है वो आपका डायरेक्शन ही बता पाएगा। बालकनी का भी यही हाल है। सेकंड, आपको किस चीज का शौक है, आपको फलों के पेड़ों का शौक है, आपको फूलों का शौक है, आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक है, या आपको सिर्फ ग्रीनरी का शौक है, जैसे आप फॉलिएज ही लगाना चाहते हैं, तो वो सब चीजों में आपको अपना डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं समझा दूं, सबसे ज्यादा धूप जो है वो साउथ में और वेस्ट में रहती है। तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए, और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर देंगे।

0: जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए।
1: जब आप एक प्लांट को अपने घर लेकर आते हैं तो आपने उसकी देखभाल उसी तरह करनी होती है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है। जब एक प्लांट आपके घर आता है तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है। ये देखना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है, उस प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर आप बीमारी या कहीं डिजीज वाला प्लांट अपने घर ले आएंगे तो उसकी ग्रोथ होने में डिफिकल्टी हो सकती है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से।
0: अगर आपके डॉक्टर, आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको अपने आसपास में एक लोकल नर्सरी के साथ जरूर रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो आप पौधा लेके आएंगे वो आपको सही पौधा मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले को अपनी रेपुटेशन भी संभाल के रखनी है। बड़ी बार लोग करते हैं मैं देहरादून से पौधा ले आई, मैं ये वाला पौधा केरला से ले आई या ये वाला पौधा मैं गुजरात से ले आई। बहुत अच्छी बात है, एक आधा पौधा आपके गार्डन में ऐसा हो व्हाई नॉट, बट अगर वो पौधा खराब हो जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे। पर आपका अगर लोकल नर्सरी वाला होगा तो तो आप उसको पकड़ सकते हैं, और उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपका पौधा एक्सचेंज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने गलत सीजन में गलत पौधा दे दिया है। आप बड़ी बार देखेंगे लोगों को आजकल सक्यूलेंट एंड कैक्टाई का बहुत शौक हो गया है, बहुत सुंदर वैरायटीज उसमें आती हैं, पर कब हमने वो लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नर्सरी वाले भी सक्यूलेंट एंड कैक्टाई को एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं संभाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं 70% ऑफ पे आपको दे देते हैं, और आप भाग के जाके सारे उठा लाते हो, पर एक एक करके वो आपके घर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इम्पल्स बाय मत करिए। एग्जीबिशन देखी तो भाग के जाके सारे पौधे उठा लिए। इम्पल्स बाय में ज्यादा से ज्यादा पौधे नहीं चलते, दे आर कॉल्ड वन सीजन प्लांट। अगर आपने ट्यूलिप लाना है तो एक ही सीजन चलेगा, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं उस बल्ब को हर साल चला पाऊंगी, मुश्किल हो जाती है। नर्सरी वालों को इतनी मुश्किल होती है तो हम लोगों को क्यों नहीं होगी। एंड नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर्स हैं हमारे पास, गर्मी है तो भीषण गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ठंड है, तो पौधों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई पौधा लाएं उसका पहला सीजन, हर जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है, अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। वो साउथ में और वेस्ट में रहती है,

अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर देंगे।

जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए। अगर आपके डॉक्टर आपके जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको हर जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे

से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं, उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है, अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। चीख पे मरना शुरू हो जाता है और आप बड़े हैरान होते हो और आप कहते हो, पौधा तो मैं बहुत हेल्दी लाया था या लाई थी और 10-15 दिन तक भी ठीक रहा, पता नहीं अब क्या हो गया, मेरा पौधा खत्म हो गया। तो उसका उसके बारे में आप समझिए, उस पौधे को जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस में जो पौधे पड़े हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको घर लाके अपने बालकनी में या अपने छतों पे रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। या तो आपको पहले ये पौधों को कुछ टाइम के लिए शेड में रखना पड़ेगा, जैसे आपके घर में कोई नीचे पेड़ है, पेड़ के नीचे में उसको रखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप करके उसको वो हार्श कंडीशन में लेके आइए। पौधे की हेल्थ की एक और बात मैं जो बताना चाहती हूँ, पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत अच्छी से देखिए। बड़ी बार क्या होता है, गमले के ऊपर से ही या पन्नी के ऊपर से ही 3-4 टहनियां निकल के आ जाती हैं, वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 2 टहनियां ही निकल के आनी चाहिए। आप अगर ग्राफ्टेड पौधा ले रहे हैं, एक तो वो महंगा पड़ता है, पर वो ग्राफ्टेड पौधे में आपने देखना है कि वो ग्राफ्टिंग कहां से हो रही है। अगर बिल्कुल ही जड़ के पास से ग्राफ्टिंग है तो उसको मत लीजिए। कम से कम आपके गमले में 6-8 इंचेस का एक, जैसे कहते हैं ना, क्लीन स्पेस होना चाहिए और उसके बाद ग्राफ्टिंग हो तो वो पौधा ज्यादा अच्छा रहता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ कहां से लेता है, पौधा अपनी ग्रोथ स्टेम से लेता है। वो स्टेम अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग कह सकते हैं वो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत बार आप देखते हैं लोग कुप करके बैठ जाते हैं या सीधा बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर आपका स्टेम स्ट्रॉन्ग है

0: रंग है ऊपर रखना है
1: तो रंग बिरंगे पौधों को देख के मन मचल जाता है। खासकर फूल वाले जो गमले होते हैं उनको देख के लगता है सारे के सारे अपने घर में ले आए। पर आपको समझना आना चाहिए कि जब फूल लगे हों तो वो वाला पौधा मत लीजिए, जिसमें बड्स हों, कलियां हों, उसको लीजिए। क्योंकि जब आप ये फूल वाले पौधों को घर लेके जाएंगे, जैसे ये पौधे को आप घर लेके जाएंगे, इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो ये ग्रीन हाउस के अंदर है। इसको आप जब घर लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे इसके जो फूल हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे और आप फिर वेट करते रहेंगे शायद नेक्स्ट सीजन के लिए, जब इसमें फिर से फूल आएगा। पर अगर आप कलियां लेके जाएंगे, जैसे ऐसे कलियों वाला पौधा लेके जाएंगे, तो ये पौधा आपके घर में जाके एडजस्ट हो जाएगा और स्ट्रेस में आने के कारण ये जो कलियां हैं ये फूल बन जाएंगी, और जब ये फूल बन जाएंगी आपका गार्डन बहुत ही शानदार हो जाएगा। पौधा लेने के टाइम डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहां भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आप चलते हैं, तो पौधों में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब डूज क्या होते हैं? आपके पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेम अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ब्रांचिंग है वो अच्छी से हो, पर नीचे से जो नीचे से पौधा उठ रहा है वहां पे आपकी ब्रांच एक या दो होनी चाहिए। एक या दो ब्रांच के बाद वो इस तरह करके अगर ब्रांचिंग करेगा तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा हेल्थ लेगा। अननेसेसरी उसमें ब्रांचेस ना हो, जैसे इनवर्ड ब्रांचेस जो हम कहते हैं कि इधर से आपकी ब्रांच इधर आ रही है, इधर से ब्रांच इधर आ रही है, वो क्या करती है, हवा की डायरेक्शन को भी खराब कर देती है। तो आपको वो क्लिप करना है। टाइम टाइम पे आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, टाइम टाइम पे आपको उसको खाना पीना देना है। तो जब आप पौधे को घर लेके जाएं, सबसे पहले जरूरी चीज है पौधे को एकदम तुरंत उसको लगाने की कोशिश मत करिए, उसको वहां पे छोड़ दीजिए अपने घर में मिट्टी पे, उसको एक्लिमेटाइज होने दीजिए, उसको आपकी हवा आपके एनवायरमेंट के साथ जुड़ने दीजिए। जो भी आप चीज करें स्टेप बाय स्टेप करें। पौधा जब भी लगाएं शाम को लगाएं, सुबह लगा के धूप में रख देंगे पौधा एकदम मुरझा जाएगा। बहुत अगर गर्मी है तो पौधों को घर के अंदर में ले आइए, उसको फिर शाम को फिर बाहर निकालिए। जब भी आप उस पे कोई दवाई छिड़कना चाहते हैं तो दवाई याद से शाम को छिड़केंगे, पर अगर आप उनको कोई नरिशमेंट देना चाहते हैं तो वो आप हमेशा सुबह में देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और आपको अपने गार्डन का पता चल जाएगा तीन चीजों से, जिसको कहते हैं 3 B's, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज। अगर आपके गार्डन में ये तीन चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है आपका गार्डन बहुत अच्छी से चल रहा है। तो ये आपके गुड गार्डन के साइंस होते हैं। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप कोई कोर्स करते हैं, तो अगर आपको 3 B's का सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब है आपका गार्डन इज डूइंग वेरी वेल।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी हमने जाना कि किस तरीके से हम छत पर बागवानी कर सकते हैं, किस तरीके से नर्सरी लगा सकते हैं अपनी छतों पर, कौन कौन पौधे हम अपने छत पर लगा सकते हैं, ये सारी बातों को हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। साथ में हमने किसान साथियों ने जाना कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी हम कर सकते हैं, पशुपालन में किस तरीके से सावधानी, कौन सा जो महीना चल रहा है इस बरसात के मौसम में हम किस तरीके से अपने पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ये सारी बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और खूबसूरत एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो सिंगर हमारे साथ हैं, वो दरअसल एक पैशनेट सिंगर हैं और बहुत ही छोटी उम्र से गाते आ रहे हैं। खास करके वो किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फैन हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं। बहुत सारे सिंगिंग ग्रुप्स जो बैंगलोर में हैं उनसे वो एसोसिएटेड है और लगातार इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं। वैसे संदीप पाल साहब जो आज हमारे टैलेंट हैं, जो आज हमारे मेहमान हैं, वो एक फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। बाकी बातचीत हम संदीप भाई से करेंगे। तो संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप हमारे सभी लिसनर्स को, जो आज के कलाकार के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपने बारे में अपने ही जबान से बताएं। बाकी छोटा सा जो मैं बता सका वो मैंने बताया, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे। तो आप बैंगलोर में हैं और फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, और कुछ आप अपने अपने सुनने वालों को बताना चाहें तो बोलिए।
1: नमस्ते दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं बैंगलोर में आज 13-14 साल से हूँ। आई बेसिकली बिलोंग टू बिहार, पटना। एंड सिंगिंग एक मेरा पैशन रहा राइट फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन जैसे आप लोगों को पता होता है कि प्रोफेशन के चक्कर में बहुत समय हम लोग अपना जो पैशन है, जो हॉबी है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो अभी हाल ही में 5-6 साल पहले से फिर से मैंने सोचा कि एक बार फिर से अपना जो पैशन है उसको परस्यू किया जाए। तो आई गॉट टू नो देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल हेयर इन बैंगलोर, स्पेशली जो कैरोके ग्रुप्स है, म्यूजिकल ग्रुप्स है। तो फिर से मैंने वो, जब से मेरे को पता चला तो फिर मैं उन लोगों से एसोसिएट हुआ और उसके बाद फिर मैं गाना फिर से चालू किया। ऐसे तो गाना मेरा काफी पहले से रहा है, 13-14 साल से, साल का जब था तभी से मैं गाना चालू किया। लेकिन बीच में थोड़ा सा काफी लंबे अरसे तक मैं गा नहीं पाया बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, तभी फिर से मैं चालू किया हूँ। एंड अक्सर वीकेंड्स में जाना होता है, इवेंट्स जब रहते हैं तो फिर गाने का मौका मिलता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: इसके अलावा
0: जी
1: हाँ नहीं इसके अलावा मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर पूछे तो मतलब आई एम मैरिड विथ वन सन हु इज वर्किंग एट दिस मोमेंट, एंड वी आर अ वेरी स्मॉल फैमिली विथ माय वाइफ, सन एंड माय मदर।
0: ओके बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें इस प्यारे से प्रोग्राम को संदीप पाल जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत सुंदर गायकी। संदीप भाई, किसने मोटिवेट किया आपको संगीत में आने की? प्रेरणा कहाँ मिली, किससे मिली, किसने कहा?
1: देखिए, एक्चुअली गाने का जो मोटिवेशन है, एक तो मेरे को शुरू से किशोर कुमार साहब का गाना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनका उनका गाना अक्सर दोस्तों के साथ जब बैठता था तो उन लोगों के बीच भी गाता गाते रहता था। तो चूंकि मेरे को उनका गाना अच्छा लगता था, तो आई यूज टू सिंग हिज सॉन्ग, किशोर कुमार सॉन्ग। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड कि यार तेरा, तू जब किशोर कुमार के गाने गाते हैं तो तू अच्छा गाता है एंड इट साउंड्स गुड, सो व्हाई डोंट यू कंटिन्यू सिंगिंग एंड कंटिन्यू एंड परस्यू दिस सिंगिंग। तो इसी तरह से उन लोगों के, दोस्तों के एनकरेजमेंट पे ही मैं एक्चुअली गाना शुरू किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल माय फ्रेंड्स हु यूज्ड टू लिसन टू मी, दे ओनली मोटिवेटेड मी टू सिंग।
0: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, हम अगला गाना संदीप जी का गाया हुआ पेश करते हैं, उनके सारे दोस्तों को डेडिकेट करते हुए जिन्होंने उनको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और हमें आज उनके गाने सुनने को मिल रहे हैं। तो लीजिए, पेश करता हूं अगला गीत।

0: बहुत सुंदर। संदीप भाई, बात म्यूजिक की है तो किस किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? आई मीन टू आस्क, फोक म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफी, यू नो, इंग्लिश, किसी और तरीके का म्यूजिक, गजल्स, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक?
1: देखिए समीर जी, ऐसा है कि म्यूजिक तो मतलब हर तरह का म्यूजिक मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी खास करके मेरे को ज्यादा झुकाव बॉलीवुड म्यूजिक की तरफ रहा है। एंड इसके अलावा बॉलीवुड म्यूजिक मतलब फिल्मी गाने के अलावा मेरे को गजल्स बहुत पसंद है, खास करके हरिहरन साहब का गजल मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। उनका जितना भी एल्बम है, जितने भी गाने हैं, मैं सुनते रहता हूँ। हालांकि कभी गजल गाने का मतलब मैं गाया नहीं या फिर गाने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं गजल उस तरीके से नहीं गा पाऊंगा। तो मैं सुनते रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है गजल गाना। एंड इसके अलावा कुछ अपने जो लेजेंड्स हैं, जैसे लता जी, आशा जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब, इन लोगों का कुछ कुछ गाना मतलब जो पुराने गीत गाने हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, ओल्ड सॉन्ग्स।
0: ओके, वेरी नाइस, बहुत खूब। और उसी तरह के गीतों का लुत्फ भी संदीप भाई उठाते हैं, तो चलिए ना हम लोग भी एक प्यारा सा गीत सुनते हैं संदीप जी की ही आवाज़ में।